0: बल इसको प्राप्त हो जाता। तो अब इस प्रकार से यहां कहते हुए कहा कि ये जो है जीवात्मा है ये भी कैसा है, बल संपन्न है। लेकिन बल संपन्न कब रहता है और निर्बल कब हो जाता, तो अविद्या को लेकर के ही इसमें निर्बलता और विद्या को लेकर के ही इसमें बल। और जब इसके जीवन में यह विद्या आती है और जब वो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि जो अवस्थाएं हैं बाल्या युवा वृद्धा आदि अवस्थाओं का अनुभव करते हुए जब ये देखता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, तभी उसके जीवन में क्या आता है, असंसक्तता आती है। और उससे पहले असंसक्तता नहीं आती। और क्या यूं कहने कि जीवन में विद्या आती और विद्या आती है तो वो समझ लेता है, तब उसके अंतर्गत कर्म को छोड़ देने से कर्म को न करने से वो प्रसन्न नहीं होता और कर्म को करने से वो उसमें आसक्त भी नहीं होता। कब, जब विद्या आती। लेकिन हम यदि कहें कि कर्म को हम छोड़ देंगे और प्रसन्न हो तो इससे क्या है, हम निष्कर्मी हो जाएंगे, कहा यह संभव नहीं। असंत हो जाओगे, कहा संभव नहीं। और कर्म को करने से आप जो है उसमें आसक्त हो जाओगे, कहा ऐसा भी नहीं। लेकिन इन दोनों के मध्य में हमें क्या देखना होगा, तो ये देखना होगा कि वास्तव में जब इसके अंदर वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला जो आत्मा जिसे हम जीवात्मा करके कहते, उसके बगैर यह शरीर में कोई भी पवित्रता रह जाती नहीं। उसके होने पर ही ये पवित्र रहते हैं, उसके होने पर ही इसमें जो भी क्रिया हो रही है वो बल को प्राप्त होती है और उसके न होने पर कोई भी क्रिया बल को प्राप्त नहीं होती। ये सिद्ध होता है क्योंकि हमारी प्राण वायु भी महान वायु को लेकर के ही प्रबल होती और आत्मा होता तभी वो करने में समर्थ होती। तो ये सारा का सारा बल किसको लेकर के है, तो आत्मा को लेकर के। अब जिस आत्मा को लेकर के है उस आत्मा का हमें रूप पता चले कि वो आत्मा क्या है, तो आत्मा क्या है, तो इसके लिए गीता में उपनिषदों में सर्वत्र क्या कहा कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो अब जब आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, तो उसका कभी नाश तो होना नहीं, उसका कभी अभाव तो होना नहीं। अभाव किसका होना है, तो कहने लगे आत्मा में जो आरोपित है। इसी को लेकर के जागृत अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, स्वप्न अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, सुसुप्ति का भी अभाव देखा जाता है, लेकिन इन अवस्थाओं को धारण जो करने वाला उसका, अवस्थाओं को जो धारण करने वाला है उसका अभाव देखा जाता नहीं। उन अवस्थाओं को लेकर के जो अहम को धारण करने वाला है, ध्यान दो, जो मैं हूं इस वृत्ति वाला है, इस अहम को धारण करने वाला है, इस अहम का भी तो अभाव देखा जाता। विचार क्या करना है, इस अहम का भी अभाव उस सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत देखा जाता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, जो वस्तु आने वाली है जो जाने वाली है वो कैसी है, कहा वो विनाशी है, अनित्य। आगमा पायनो अनित्यः, क्या है, जो आने वाली और जाने वाली है आगमा पाई है वो कैसी है, कहा अनित्य है। तो ये अहम कैसा हो गया, तर्क के अनुसार हम देखें जब इस अहम का भी वहां पर जो है अभाव होता है तो ये जो अहम है वो कैसा है, अनित्य हो गया। लेकिन अहम जिसमें आता है, जैसे कल कहा था वस्त्र आपने धारण किया, तो आप तो हो लेकिन वस्त्र नहीं रहता हमेशा, आप धारण करते तब रहता है फिर दूसरा धारण कर लेते, ये सब देखा जाए। ऐसे ही अहम को भी धारण किया गया और अहम को धारण किया गया तो वो जिसने धारण किया वो तो क्या है, रहता है, लेकिन अहम कभी रहता और कभी जागृत आदि में तो रहता है लेकिन सुसुप्ति में अहम नहीं रहता। तो ये जो अहम करके हम जो अपने को जानते हैं ये जानना ही क्या है? अविद्या है। ये जानना ही क्या है? अविद्या। लेकिन अहम का आधार जो है, अहम का आश्रय जो है, जिसको लेकर के अहम प्रस्फुटित होता है, वही क्या है? कहा वो है आत्मा, वो है नित्य। और वो जो नित्य है, ऐसे उसको जान लेने का नाम ही है क्या? विद्या। उसका नाम क्या हुआ? कहा विद्या। और ये जब विद्या आ जाती है तो किसको जाना? तो कहने लगे जो अहम को धारण करने वाला, अवस्थाओं को धारण करने वाला। और एक दिन कहा था हम धारण करते किस लिए? कार्य विशेष के लिए, एक खेल विशेष के लिए, एक लीला विशेष के लिए। सारी चीजों को हम धारण करते हैं लेकिन उन्हें धारण ही नहीं किए रहते और तदरूप हम नहीं होते, उनको हम उतार देते हैं, हम उससे सर्वथा पृथक होते। लीला के अंतर्गत जो भी वस्त्र आभूषण व्यक्ति धारण करता तो व्यक्ति वस्त्र आभूषण नहीं है किंतु उन वस्त्र आभूषणों से सर्वथा पृथक। वो वस्त्र आभूषण सुशोभित कब होते? यदि उसके शरीर पर आते हैं वो धारण करता तब तो शोभा को देते, लेकिन केवल वस्त्र आभूषण रखे रहे तो सुशोभित होंगे, तब उनकी शोभा नहीं होती। उनकी शोभा भी कब होती है? जब उनको धारण किया जाए। लेकिन उनके अंतर्गत है अनित्यता और वो धारण करने वाला वो नहीं है, ये सिद्ध होता। ठीक इसी प्रकार से इन वस्तुओं आदि को धारण करके इन्हें पवित्र करने वाला जो है वो है क्या? आत्मा। और वही है क्या? तुम शब्द से कहा जाने वाला तू, वही अहम शब्द से कहा जाने, संकेत उसकी तरफ। लेकिन अहम करके हम जिसको, जो आभूषण मात्र को लेकर के हम ले रहे हैं या जो है हम शरीर मात्र को लेकर के ले रहे हैं, वो अहम कैसा है? वो अनित्य है। तब अहम सत्य कौन है? तो जो आत्मा में ही यदि अहम का प्रबोध हो जाए, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते मैं ब्रह्म ही हूं है, जैसे लीला करने वाला कह दे। और संत लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक बुद्धू नाम था व्यक्ति और उसे रामलीला में कर दिया गया, और रामलीला में कर दिया गया उसे एक पात्रता दे दी गई, वो पात्र बन गया। उधर जो है जब युद्ध हुआ तो रावण ने हुंकार भरी, और हुंकार भरी और जैसे ही रावण उस पर टूटा तो वो कहने लगा नहीं मैं तो बुद्धू हूं है। क्या मतलब? क्योंकि वैसे तो अब जो है जैसे उसका अभिनिवेश किसमें है, ऐसे ही हमारा अभिनिवेश किसमें है और कहां पर हमारी स्थिति है, ये बस विद्या अविद्या का रूप है। और ये चीज हमारी समझ में जब आ जाती है तो प्रकृति भी हमको जो है इसका संदेश देती है, लेकिन उस प्रकृति से भी हम समझ पाते नहीं। और जब प्रकृति का हम विचार करने लगते हैं तो बात समझ में आ जाती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता? तो ये होता है, तो सारा जगत हमारे लिए खेल रूप हो जाता है। और खेल रूप हो जाता है तो खेल रूप होने पर खेल में जो भी हमने धारण किया था या जो भी हमने रूप लिया था, उस रूप में हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। हम क्या जानते हैं? वहां हमें बोध होता मैं तो अमुक व्यक्ति हूं, ये तो रूप मैंने धारण किया। लेकिन दुखद स्थिति वही हो जाती है जहां उस रूप में आसक्ति हो जाए। उस रूप में आसक्ति का होना ही हमारे लिए दुखद है, और उस आसक्ति में कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: अरे धर्मधार एक 5 करोड़ 10 करोड़ बरस पहले की बात बताता है। 5-10 करोड़ पहले जीव ऐसा था, इस वैसा था, विकास हुआ कैसा हुआ। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो खाने पीने का ज्ञान न हो? ऐसा कौन सा प्राणी है परिवार में आसक्त न हो? ऐसा कौन सा प्राणी है सोना जागना जानता न हो? ज्ञान तो सबका, खाने पीने का ज्ञान, सोने जागने का ज्ञान, संबंधियों का ज्ञान सब में है, परंतु ये ज्ञान तुम्हारा अज्ञान को नाश नहीं करेगा। ये ज्ञान तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं कराएगा। ये ज्ञान तुम्हारे अविद्या का नाश नहीं कराएगा। विद्या अविद्या निहंती है वह, जैसे सूर्य का प्रकाश होने से रात्रि का अंधकार मिटता है, तो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। अन्य बात, ऐसे स्वरूप विषय के अज्ञान को नाश करने के लिए वेदांत विज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए शास्त्र में लिखता है, सदा विचार है, हमेशा विचार करते रहो। क्या विचार करे? जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, ये विचार करते रहो सदा करो। क्यों? बिना विचार से ज्ञान होने वाला नहीं है। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन यथा पदार्थ भावना में प्रकाश है न बिना कोशिश। रात्रि के अंधकार में पड़ी हुई है कोई वस्तु है, उन वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश। क्यों? बिना प्रकाश से आज कुछ नहीं होगा। वो प्रकाश कहाँ से आएगा? अंधकार से प्रार्थना करो, अंधकार तू चला जा, दिया धूप दियो, दीप दियो, सामग्री लगाओ, प्रार्थना करो, ओम जय जगदीश हरे करो, अंधकार मिटेगा? अंधकार का जो विरोधी होगा वही अंधकार को मिटेगा, दूसरा को नहीं मिटाएगा। दिया तो चलाना पड़ेगा, अंधकार का मिटाना होगा। तो अंधकार को मिटाने के लिए एकमात्र साधन आपके पास है क्या? प्रकाश। अंधकार को मिटाना हो तो आनी बात, और कोई साधन आपके पास आए नहीं। कर्म करो, प्रार्थना करो, आनी बात, समाधि लगाओ, इससे कोई अंधकार मिटेगा नहीं। अंधकार कहते हमको मिटाना हो तो हमारे विरोधी को बुलाओ, प्रकाश को बुलाओ। तो प्रकाश बैठे है ना? समझेंगे नहीं? तो इसीलिए विचार चाहिए। तो पूछा शिष्य ने, क्या विचार करे? हम तो खाते पीते बिना विचार से सब भोजन भी नहीं करते हो। खाने वगैरह खाने के सामान के भी विचार करना पड़ता है, खाने योग्य है कि नहीं है, है? खाने के हम एक बार नेपाल गए काशी से हवाई जहाज में बैठने के लिए, तो हवाई अड्डा में जो गए तो वहां 2 घंटा लेट है गाड़ी हवाई जहाज आने का। तो उन्होंने खाने की व्यवस्था किया, ऊपर जाओ, ऊपर उधर अभी 12 बज गया, 1 बज गया, आपको खाने के लिए वहां बुला रहे। तो अरे सब यात्री जोर जोर जोर जोर जोर कर ऊपर गया, ऐसा मालूम पड़ता गया, ऐसा जोर से चला, धक्का बक्का धक्का वहां रखा है टेबल में, ऐसा ऐसा ये दाल है, चावल है, फलाना है, ढमका है, बहुत से आइटम रखा। तो माताएं क्या कर, एक दूसरे को धक्का देकर इधर से ले भी, इधर से ले भी, इधर से ले भी। एक ने वहां गोश्त रखा है, मीट रखा है, तो माता ने वो ले लिया, वे ले लिया, ये ले लिया। उस जब खाने लगे गब्बास मारता, ये क्या सीजाई, क्या सीजाई। मैंने कहा देखा अभी वो समय लेने के क्या देखा नहीं, क्या सीजाई, खाने से जो है कि नहीं है, लेने से जो है कि नहीं है, वो नहीं देखा। तो मतलब कहने का, मनुष्य को खाने के पर भी विचार करना पड़ता है, ये खाने लायक है कि नहीं है, खाने लायक है कि नहीं है, ये विचार करके खाते हैं। और बहुत से आदमी मनुष्य तो विचार कम करते, पशु ज्यादा विचार करते। पशु गाय के सामने घास रखो ऐसे सूंघेगा, फिर जीभ मारेगा। और कुत्ता को रोटी या बिस्कुट डालते, हमने देखा हमारे वहां बहुत से मारवाड़ी है, सुबह उठ करके हम घूमने जाते हैं ना, तो वो भी जाते हैं बिस्कुट का थैला ले करके जाते, तो कुत्ता को देता है, तो कुत्ता सूंघ सूंघ करके फेंक दे, खाता नहीं। मैंने कहा कैसा है, मैंने कहा कंजूस है, कंजूस का बिस्कुट कुत्ता भी नहीं खाता है। हाँ हाँ आप देख लेना कभी, कंजूस का बिस्कुट तो होते है ना रोटी, वो रोटी देता है नहीं खाता। गाय को रोटी देता है, बासी रोटी ला करके देते है ना, तो रात को खाया नहीं है, बासी बच गया होगा, सुबह बहुत से आदमी गाय को देता है, तो गाय की पड़ती है फिर छोड़ देती है। और दस दिन का बासी रोटी वही खाएगा जिसको खाने को नहीं मिलता, तो खाएगी कैसे, उसको भी विचार होता है खाने लायक है कि नहीं है, तो खाने लायक है वो खाएगा। अरे देखो, भूख लग जाए खा जाना वो आफत काल है। क्या उपनिषदों में भी बात आई है, हाँ उशस्त्र नाम का जो ऋषि था, वो अपने देश में कुरु देश में जो अकाल पड़ा, तो अपने पत्नी को लेकर के चल पड़ा, तो एक जगह में ऐसा आया जो वहां भी अकाली था, एक जो है ना वो हाथी चलाने वाला हाथी बांग, हाँ उड़द का दाल खा रहा था, उड़द का दाल और कुछ नहीं मिलता था, वो अभी झूठा है, तो उससे कहा हमको थोड़ा दाल दे, बोले तो झूठा है कैसे दूं तुमको, तुम ब्राह्मण हो, बोले इस समय तो तुझे दे मेरा प्राण बचाना है, तो खाया फिर पानी दिया पिया नहीं, बोले क्यों झूठा है, बोले दाल झूठा नहीं था, तो झूठा दाल तो तुमने खा गया और झूठा पानी नहीं पी सकते, बोले नहीं क्यों, पानी सब मिलता है, अन्न नहीं मिल रहा था इसीलिए खाया। तो विपत्ति काल में मर्यादा नास्ती, विपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती। आप ट्रेन अभी देखो, अभी तो ट्रेन में सब व्यवस्था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया, वो एसी हो गया, सब व्यवस्था है। पहले हमने देखा गाड़ी में जो आए ना, जो सुराही रखते थे पानी के लिए, सुराही कुंजा, सुराही या कुंजा कहते, कुंजा भी कहते सुराही भी कहते। अच्छा जहां गाड़ी रुक गई है ऐसी जगह में, पानी खत्म हो गया सुराही का कुंजे का, तब उस समय गांव वाला ऐसे गंदा पात्र में पानी लाता है, लो पानी एक रुपया, पहले एक रुपये में देता था, एक एक है ना मटका, अभी वो देखने में आंख बंद करना पड़ता है, तो उसको कहते इसमें डाल दे, तो उसमें डाल करके लाते हैं पीने के लिए, तो वहां अगर पीता है, वहां नहीं पीता, वहां पीने के लायक नहीं होता है, तो उस अवस्था में वो पानी पीते हम आपत्काल है। तो आपत्काल में मर्यादा नास्ती, वहां मर्यादा नहीं चलेगा, आपत्ति काल में प्राण निकल रहा है, उस समय क्या करोगे, भूख से प्राण निकल रहा है, भूखा आदमी है, उस समय भलाई खा लो, जब आपत्ति काल नहीं है तो खाओगे क्या है? तो चलो, कहने का मतलब ज्ञान जो है ना उत्पन्न होता है विचार से, नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन ही, अन्य साधन कर्म उपासना भक्ति आदि कोई भी हो, ये ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, याद रखना। ज्ञान उत्पन्न होगा केवल विचार से, वो कौन सा विचार करोगे, वेदांत वाक्यों का विचार करो, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य उपपत्ति भी मत्वा सततम धे एते दर्शन हेतव। श्रुति भगवते कहती है श्रोतव्यम सुनना चाहिए, किम श्रोतव्यम श्रुति वाक्येभ्य, तुम सुनो सुनो सुनो, क्या सुने, टीवी सुने, रेडियो सुने, भाषण सुने, फलाना सुने, ढेमका सुने, क्या सुने? तो कहते श्रुति वाक्यभ्य, श्रुति का वाक्य श्रवण करो, श्रोतव्यम श्रुति वाक्यभ्य, श्रुति का वाक्य श्रवण करो, एकमेव द्वितीयम निहन नास्ति किंचन सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्तमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, ऐसे वाक्यों का श्रवण करो। श्रुत्वा श्रवण करने के बाद मनन करो, मंतव्य मनन करो, कैसे? युक्ति के द्वारा, कहने मात्र से नहीं, युक्ति ये समय प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् घटवत्, ये युक्ति है, तर्क है, युक्ति माने तर्क के द्वारा हम जो बात को सुना है उसकी वास्तविकता सत्यता को निश्चय कैसे करेंगे, युक्ति के द्वारा। आनी बात तो युक्ति के द्वारा तुम इसको मनन करो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, सत्य क्या से जाए, ज्ञान क्या से जाए, अनंतता क्या से जाए, ये सब श्रवण करने के बाद इस पर विचार करो। मत्वास सततम दे, मनन करने के बाद में निश्चय हुआ, इसका ध्यान में बैठ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि में। आनी बात इसीलिए सदा विचार है, हमारा विचार करो, देह को देह आत्मा है कि नहीं विचार करो, देह आत्मा है कि नहीं, क्यों? नाहम देह नाहम जीवा, मैं देह भी नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं, तो तुम देह नहीं हो, देह तो तुम्हारा है कि नहीं? आप देह नहीं है, मैं मान लिया, क्यों देह नहीं है? देह इसीलिए नहीं है, देह जड़ है, मैं चेतन हूं, देह जड़ है, मैं देह विकारी है, मैं निर्विकार हूं, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। आनी बात देह क्या है? दृश्य है। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, जहां जहां दृश्यता होगी वहां वहां मिथ्या होगा। यथा सुक्तिरतम, सुक्ति में सुक्ति को हमने चांदी के रूप में देखा, परंतु क्या मिल गया? चांदी मिला, क्यों? तो चांदी तो देखा, सुक्ति क्यों नहीं मिला, चांदी क्यों नहीं मिला? वहां चांदी वहां प्रातिभाषिक है, भास रहा, अन्य में अन्य वस्तु को देखना इसका नाम मिथ्या। तो तुमने आत्मा में देह को देखा, तो आत्मा के संबंध से देह चेतन हो गया, आत्मा के संबंध से देह चेतन भास रहा है। जैसे देखो एक गुड़ है, गुड़ गुड़ के साथ संबंध जिस वस्तु का होगा, गुड़ उसी को मीठा बनाएगा कि नहीं? शक्कर है, और शक्कर को तुम चाय में डालो, दूध में डालो, हलवा में डालो, जिलेबी में डालो, रसगुल्ला में डालो, गुलाब जामुन में डालो, कहीं भी डालो, तो शक्कर का काम है सबको। अगर शक्कर ने मीठा नहीं बनाया तो शक्कर ही नहीं है। जिस शक्कर ने दूसरा को मीठा नहीं बनाया वो शक्कर ही नहीं है। ऐसे जिस चेतन ने आत्म चेतन ने मीठा को सच्चा सा प्रतीत नहीं कराया वो चेतन ही नहीं है। तुम चेतन स्वरूप हो, ये तुम्हारे संबंध से तुम्हारा देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब चेतन बन गया, वास्तव में चेतन तुम्हारे संबंध से तुम्हारे सत्ता से सत्तावान होकर के अनिगत ये शरीर देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि काम करता है, चेतन होता है। ऐसे संपूर्ण जगत प्रपंच मात्र में एक ही चेतन है, जिस चेतन से पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता गुल्म आदि सब के सब भास रहा है, भास रहा है, सत्ता के रूप में भास रहा है, आनी बात चेतन के रूप में भास रहा है। तो इन सब के अंदर कौन से सत्ता है, कौन से वस्तु है जो सबको चेतन भस रहा है, चेतन प्रदीत करा रहा है? आत्मा। आत्मा ऐसे तुम्हारे इस शरीर के जो अहम अहम है, अहम होने के कारण तुम्हारी आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, नाक सुनता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि चलता है, और अहम नहीं है तो असुसुप्ति अवस्था में तुम्हारा अहम कहाँ जाता है या शरीर क्यों नहीं काम करता है? कभी देखा, कभी विचार किया, हम सो करके कहाँ जाते हैं? सोने के बाद में सुसुप्ति में आप कहाँ जाते हो? हाँ, तीन अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था। कमा माने मूर्छा, मूर्छा अवस्था है नहीं बात? आज जैसे सुसुप्ति अवस्था है, समाधि अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था में तुम रहती हो कि नहीं रहती हो? तो हाथ पैर काम क्यों नहीं करता है? सुसुप्ति अवस्था है, कौन अविद्या में कौन लीन हुआ? शरीर अंतकर अविद्या में, शरीर तो पड़ा हुआ है मुर्दा जैसे, चिदाभास। हाँ, जीव नहीं रहता उस समय, समझे कि नहीं? जीव अपने कारण में लेन रहते, सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमो विभूत सुख रूप में थी, जीव सैव जागर सबिति प्रबुद्ध सैव जीव। वह जो जीव है जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पाना दे विचित्र हो गई, सैव जागर सबिति प्रबुद्ध सुसुप्ति काले सकले बिलीन सपने भी जीव सुख दुख भोक्ता सैव जागृत सबिति प्रबुद्ध। हाँ, जैसे जागृत अवस्था में स्त्री अन्न बनादि नाना प्रकार के भोगों से तुम तृप्त होते हो, ऐसे सपना अवस्था में नाना प्रकार के भोग तुमको मिलता है स्वप्न में भी, सुसुप्त काल में विलीन हो जाता है, कारण वो सब अविद्या में लय हो जाता है, आनी बात, अज्ञान में लय हो जाता है। अज्ञान में लय होने के कारण उस अवस्था में आपका इंद्रिया काम नहीं करते, इंद्रिया काम नहीं करते, क्यों? ये इंद्रिया तमाम इंद्रिया अपने कारण में अविद्या में लीन हो जाते हैं। देखने में ये इंद्रिया देखती है, इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों का गोलक है ये जो आंख कान नाक आदि है ना, ये गोलक है, गोलक इंद्रियों की वृत्ति की आने जाने की रास्ता है। देखो, जब आंख टेस्ट कराने जाते हो ना, आंख दिखाने जाते हो, तो डॉक्टर लोग सामने शीशा रखता है, देखो देखो, हाँ पढ़ो, हाँ तुम्हारा क्या है ना, लेंस लगा था ना, क्या आपको काम हो गया कुछ? नहीं, एक रे आता है ना, रे किरण निकलता है ना, लेजर रे किरण निकलता है, वो रास्ता बंद हो गया कहता है, वो रास्ता आप नहीं आएगा कहते, आग तुम्हारा बिल्कुल चला गया। तो मतलब है कहाँ से, भीतर से आता है कि नहीं प्रकाश? आंख के द्वारा बाहर जाता है, जैसे टर्स लाइट आ जाएगी ना, टर्स जामर, तो टर्स से बल्ब से प्रकाश बाहर जाता है कि नहीं? टॉर्च होते हैं ना, ऐसे मानते हैं बैटरी, हाँ टॉर्च। शीशा से बाहर जाता है, वहां तक शीशा है एक, शीशा में प्रकाश कहाँ से आता है? बल्ब से। बल्ब कहाँ से आता है? बल्ब अपने आप जलता है, वो बैटरी सेल से, सेल के साथ इसका साथ संबंध करते हो, कनेक्शन जोड़ते हो कि नहीं, स्विच दबाते हो कि नहीं? तो सेल में जो प्रकाश है वो तुमको देखता है, क्या देखेगा? आप ये सेल में प्रकाश है कि नहीं है? दिखता नहीं, क्यों? तोड़ करके देखो कहाँ है, तो बल्ब के साथ उसका कनेक्शन होगा तो बल्ब में प्रकाश आएगा, बल्ब से फिर शीशा में आएगा, शीशा से फिर बाहर जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे शरीर का है, समझे कि नहीं। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा के साथ इंद्रिय, इंद्रिय के साथ मन, मन के साथ ही युक्त होता है, तब विषय का ज्ञान होता है। विषय का ज्ञान प्राप्त करना होगा, आंख खोलो, आंख बंद करोगे, कान बंद करोगे, होगा हा? तो आंख में कहां से आएगा? मन से आया। मन में कहां से आएगा? बुद्धि से आएगा। बुद्धि से कहां आएगा? आभास से आएगा। ये प्रक्रिया है। तुम एक बैटरी को समझोगे, टर्स को समझोगे, तो अपना शरीर समझने में देर नहीं लगेगा। टाइम हो गया, ये देखा आ गया। पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ॐ प्रतिसरियाय नमः, ॐ परावरेशरुद्राय नमः, ॐ भवाय नमः, ॐ अलङ्घ्यशक्तये नमः, ॐ इन्द्रध्वंसनिधीशाय

नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ सहस्रचरणाय नमः ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ सर्वदेवमय

नमः ॐ ब्रह्मशिरच्छेत्रे नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ कड्घिने नमः ॐ हरिकेशाय नमः ॐ विभवे नमः ॐ पञ्चवर्णाय नमः ॐ वज्रिणे नमः ॐ पञ्च

नमः। ॐ वरदाभयहस्ताय नमः। ॐ घण्टाहस्ताय नमः। ॐ घस्मराय नमः। ॐ अजिताय नमः। ॐ अणिमादिगुणेशाय नमः। ॐ पञ्चब्रह्ममयाय नमः।

ॐ भूताय नमः, ॐ पञ्चभूतात्मने नमः, ॐ अनिर्विण्णाय नमः, ॐ तथ्याय नमः, ॐ पापनाशकराय नमः, ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः, ॐ मन्त्रिणे नमः, ॐ अनन्तरूपिणे नमः, ॐ सिद्धसाधकरूपाय नमः, ॐ मेदिनीरूपिणे नमः, ॐ अघण्यप्रथापाय नमः, ॐ सुधाहस्ताय नमः, ॐ श्रीवल्लभाय नमः, ॐ ईद्र्य

ब्रह्मनिष्ठाय नमः ओम ध्यानरूपाय नमः ओम शाश्वतैश्वर्य विभवाय नमः ओम प्राणेश्वराय नमः ओम सर्वशक्तिधराय नमः ओम धर्माधाराय नमः ओम धन्याय नमः ओम पुष्कलाय नमः ओम वरिष्ठाय नमः।

प्रकणमिताय नमः। ॐ महर्षिवन्दिताय नमः। ॐ प्रकाशाय नमः। ॐ सुधर्मिणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्मयाय नमः। ॐ जगद्बीजाय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ सेव्याय नमः। ॐ क्रतवे नमः। ॐ आधिपत्याय नमः। ॐ कामाय नमः। ॐ स्वराय नमः। ॐ यशसे नमः। ॐ प्रचेतसे नमः। ॐ ब्रह्ममयाय नमः। ॐ सकलाय नमः। ॐ रुक्मवर्णाय नमः।

नमः। ओम हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ओम दुर्वाससे नमः। ओम षड्विकाररहिताय नमः। ओम देहार्धकांताय नमः। ओम षडूर्मिरहिताय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम भवनाशाय नमः। ओम ताम्राय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम अनंतकोटिब्रह्मांडनाय

त्रिलोचनाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ त्रिविष्टपेश्वराय नमः ॐ व्याघ्रेश्वराय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ धात्रे नमः।

0: इति श्री पद्मे पुराणे पञ्चपञ्चाशत्साहस्रिकायां संहितायामुत्तरभागे विल्वकेश्वरमाहात्म्ये श्रीकृष्णमार्कण्डेयसंवादे वेदसाराख्यं शिवसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय। यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम्.org रेडियोस्, 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

मयी धेह्यक्षीतिरसीमा मे इक्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिल्लोक इह च एषा ते ए अग्ने समित्तया वर्धस्व चाचप्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमाचप्यासिषीमहि एतत्ते ए देवसवितर्यज्ञम् प्राहुर्बृहस्पताये ब्रह्मणे तेना यज्ञमावतेना यज्ञपातिन्तेन मामाव मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तानोतु अरिष्टं यज्ञज्ञसमिमं दाधातु विश्वे ए देवास इह मा आदयन्तामो।

सूर्या या ऊधो अदित्या उपस्था उरुधा आरा पृथिवी यज्ञे अस्मिन् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातु मीता मनासस्पत इमंदे एव यज्ञग स्वाहा वाते धाः संबर्हिरंताज्ञ हविषा आघृतेन समा आदित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः।

विश्वरूपक् स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च मन्त्रवित्परमो

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: भगवान ने कहा कि अच्छा, समुद्र में गायब जाकर छुप गए हैं, समुद्र से निकालने का उद्गम करो, उद्यत करो, उद्योग करो। लेकिन वह चीज, क्योंकि समुद्र का साम्राज्य फिर असुरों के हाथ में है और उन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत से वो रत्न निकालना है, तो उनको विश्वास में लिए बिना ऐसे होगा तो क्या करें? तो उनके साथ जाओ, संधि करो, ये चीज तुम्हारे साम्राज्य में है और हम इसको निकालने में मदद करते हैं और उसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी मिलेगा, शेयर करेंगे उसमें से, है ना? कहते हैं ना कि अमेरिका के पास जो खनिज तेल है, गैस है, अपार खनिज तेल और गैस है, लेकिन अमेरिका उसका दोहन नहीं कर रहा है, कहते अभी रिजर्व में रखा है, ऐसा सुना है हमने, उसकी नीति है। तो क्या है कि बोले जहां है उनको अपने हाथ में लेकर बोले हम तुम्हारे यहां ऐसा करेंगे, ये प्लांट लगाएंगे, यहां से तेल निकालेंगे, हम भी खरीदेंगे, औरों को भी बेचेंगे, तुम्हें इतना लाभ होगा। ये अरब कंट्री में, और वो लोग आ गए झांसे में और लगाया, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा लिए और खूब दो रन कर रहे हैं और ले रहा है, अपने अमेरिका में भी ले जा रहा है, बाहर भी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? बोले जब ये समाप्त हो जाएगा तब अपना शुरू करेंगे, दुनिया रोती रह जाएगी, अपने ठीक रहेंगे। ये तो जब इराक कुवैत आदि का तेल खत्म होगा ना, तब अमेरिका अपने यहां के दोहन करेगा। लोग कहते हैं ऐसा, उसकी नीति है, हमको उसकी कोई आलोचना करना नहीं, हम फिर वहीं जा रहे हैं 28 तारीख को तो उसकी आलोचना नहीं कर रहे, नीति है वो। इसी तरह भगवान ने कहा देवताओं को, उनके छत्र का दोहन करना है तो उनसे समझौता करना जरूरी है, तुम्हें भी ये फायदा होगा ये बताना जरूरी है। अमृत है, वहां से निकालेंगे, कुछ तुम भी ले लेना, कुछ हम भी ले लेंगे, पान करेंगे तो फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा मृत्यु का डर असुरों को होता है। राजी हो गए, लक्ष्मी निकलेगी, अमृत निकलेगा, जहर निकलेगा किसी ने नहीं कहा, सोचा भी नहीं था। अकांड ब्रह्मांड अच्छे चकित, जहर निकलेगा तो कोई भी नहीं सोचा, क्योंकि जहर को रत्न के अंतर्गत किसी ने गिना ही नहीं था, 14 रत्नों में से जहर को गिना ही नहीं था, निकल गया, वो दुर्भाग्य की बात है। वो तो शिव ही संभाल पाए, नहीं तो बात जो है गड़बड़ हो चुकी थी, शिव ही संभाल पाए, नहीं तो गया, खत्म हो गया था, मंथन किया था अमृत के लिए और जहर निकल गया, तब वो राजी हो गए तो समुद्र मंथन हो गया। कहते उसमें से जहर निकला तो सब घबरा गए, अकांड ब्रह्मांड छय चकित देवासुर कृपा विधेयस्या सिद्ध स्त्रीनयन विषम संहृतवत। सभी ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उस विष का संहार कर दिया। उसके बाद जब मंथन शुरू हुए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रत्न निकलने लग गए। उच्च सर्वा निकला, ऐरावत निकला, है ये तो आप लोगों ने सुना है ना, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अमृत लेकर जब धन्वंतरी निकले, लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, सोम निकला, कितनी चीज निकले, कल्पवृक्ष निकला, चिंतामणि निकला। जब अमृत निकला तो सब लोग, मंथन पूरा हो गया, क्योंकि उसी के लिए मंथन कर रहे थे, अमृत निकल गया, निकल गया, मंथन छूट गया, अब तो देवता और असुरों में छिना झपटी हुई, असुर लोग कहने लगे कि हमारे क्षेत्र से निकला हुआ है ये समुद्र से, तो इसका पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। देवता लोग कहने लगे कि यहां समुद्र में अमृत है, इसको निकालना चाहिए, पहला प्रस्ताव हमने लाया इसलिए हमको मिलना चाहिए। तुम्हारे क्षेत्र में होने से क्या होता है, तुमको तो पता ही नहीं था। अनुसंधान करके रिसर्च करके पता लगाया किसने, हमने। निकालना चाहिए प्रस्ताव रखा किसने, हमने, इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। असुर लोग कहने लगे नहीं नहीं हमारे क्षेत्र का है इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। तो छिना झपटी शुरू हो गई। तो आगे आप लोगों को पता ही है कहानी, भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि अरे अरे तुम लोग चिंता न करो भाई, मत लड़ो, दोनों को सबको मिल जाएगा, बैठ जाओ लाइन से, मैं बांटता हूं, बांटती हूं और क्या है? बांटता हूं तो क्या कहेंगे, मोहिनी था ना वो, तो बांटती हूं, मैं बांटती हूं। इतना सुंदर था, सब लोग विश्वास कर गए। सुंदर व्यक्ति को सभी विश्वास करते हैं, है? बाचा बपुसा वस्त्रेणा, आप लोग पर्सनालिटी बोलते हो ना अंग्रेजी में, है? वैभवेना, बाचा बपुसा वस्त्रेण वैभवेना, बाचा वाणी से व्यक्ति की पर्सनालिटी पता चलता है कि ये किस लेवल का है। उसके पहराव वस्त्रों से भी उस व्यक्ति के बारे में अनुमान किया जा सकता है कि ये किस लेवल का है। उसके शरीर की बनावट से भी पता चलता है कि ये किस लेवल का है। उसके बोलने की शैली से पता चलता है कि ये किस लेवल का है। ये अनुमान है। तब बताया कि मोहिनी आ गई और उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो हम बांट देंगे, चलो बैठ जाओ लाइन से। बैठ गए फटाफट। भगवान ने कहा असुरों को, जाकर मोहिनी ने भगवान असुरों को, आजकल करते हैं ना पुलिस वाले ड्राइवरों का, कहीं मदिरा पान करके ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, तो नाक सूंघते हैं, हाँ? पुलिस वाले जाके नाक सूंघते हैं, उसके मुंह सूंघते हैं, पता लगाते हैं तूने मदिरा पान किया है ड्राइवर, तेरे लाइसेंस गया। मोहिनी ने नाक सुना असुरों को, अरे तुम लोगों ने मदिरा पान किया था? बोले हाँ, असुर तो कहेंगे ही नहीं, कहेंगे पिया तो था महाराज, है? हर असुर मदिरा पान करता है, और मदिरा पान करता है वो असुर ही है। बोले मदिरा पान करने वाला कहीं अमृत पान कर सकता है? पहले जाओ कुल्ला करो, ब्रूस करो, नहाओ धो, तो बढ़िया वस्त्र पहनकर आओ। देखो देवताओं ने मदिरा पान नहीं किया, कितने स्वच्छ हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने स्वच्छ हैं, तुम लोग भी ऐसे बनकर आओ। मोहिनी थे तो मोहित हो गए असुर भी, बोले तुम ठीक कह रही हो। अब भी जाते हैं, गए कोई दांत मांजने लगा, कोई ब्रश करने लगा, कुछ करने लगा, सब नहाने लगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, और इतनी में भगवान ने इधर बांटना शुरू हो गया, जल्दी आना। वो लोग तो नहाने धोने में ही लगे रहे। जो केवल नहाने धोने में समय बर्बाद करता है उसका नाम क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा समय तो किसको लगता है बाथरूम में, बोलो? माताओं को लगता है। कभी नाग रगड़ेंगे, कभी पांव रगड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, ले नहाने धोने में समय बर्बाद करे वो असुर। भगवान के भजन में इतना समय नहीं दे सकते, नहाने धोने में समय बर्बाद होता है। पूजा करते हो नहीं, बोले फुर्सत नहीं होता है। नहाते हो कि नहीं? नहाता तो हूं। नहाने में कितना समय लगता है महाराज? दाढ़ी बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लगभग पौना घंटा लगता है। लेव जी रोज लगता है पौना घंटा। अब असुर नहीं है तो और क्या है? नहाने में पौना घंटा, अब भजन के लिए पांच मिनट नहीं। लेट हो गया तो क्या करे? बांटना शुरू कर दिया। उधर देखा एक ने, राहु ने, ये तो गड़बड़ हो रहा है, वहां पंक्ति शुरू हो गई। फटाफट आ गया, धोती लपेट लपेट के, त्रिपुंड लगा के, और सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। बांटते ही आए, भगवान आए उसके थाली में। आप लोगों ने बड़े बड़े कुंभ मेले में साधुओं का भंडारा देखा है कि नहीं? समझते हैं, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम, दौड़ते हैं वो मांगने वाला है सब्जी, बोलो वो तो वहां पहुंच जाता, फिर लौट कर आता बेचारा। वो इतनी तेज उनकी सर्विस होती है, वो ट्रेनिंग है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। पांच पांच छह छह हजार की पंक्ति एक ही बार में बांटनी है। साधु लोग ही उसमें परफेक्ट है, ट्रेनिंग लेते हैं। भगवान तो निकल गए, थाल में उसके पड़ गया अमृत। अब उसने विचार किया कि कहीं, क्योंकि जो व्यक्ति गलत है उसके मन में मैं गलत हूं तो हो रहता ही है ना, डर गया। भगवान ने मेरे थाल में दे दिया है, पोल पट्टी खुलने से पहले पी लो। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहने की वो प्रतीक्षा ही नहीं करने लगा। आप लोग भी करते हो ना असुर की तरह, है? थाल कटोरी गिलास सब पहले टेबल में रखता है, परोसने वाला पहले दाल लाके कटोरी में डालता है। तो आप वो कटोरी में डाला नहीं कि चम्मच से दाल शुरू किया, भात नहीं है, अपोषण करना नहीं है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि करना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषयी भुंजते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात् ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा प्राण समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर। ये सारे अन्न शोधन के मंत्र हैं। सभी चीज थाली में आने के बाद इस प्रकार से यज्ञ करो, तब वो अन्न शुद्ध होगा। अब वो लाके दाल दे दिया कटोरी में, सब्जी लेने गया तो तब तक दाल पीना शुरू कर दिया। अब फिर सब्जी रख के चला गया तो सब्जी खाना शुरू कर दिया, पकौड़े रख के चला गया तो भात लेने गया तो तब तक तो पकौड़े खत्म हो गए। ब्रह्मार्पण कब करेगा बेटा, है? तो इस तरह खाने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे बोलो, है? क्या कहेंगे उसको, आप ही बोलो नाम, जो राम रखना है रख लेना भाई, राहु रख लो, असुर रख लो, है? उसने तो ब्रह्मार्पण प्रतीक्षा ही नहीं की, बस पीना शुरू कर दिया तो सूर्य और चंद्र, ये क्या बात है? ये हमारे संस्कार का, हमारे बिरादरी का नहीं है, ये तो कहीं और कहीं बात है, कहीं से आया है बिना संस्कार का। क्या है जरा ध्यान दिया तो, अरे ये तो असुर राहु। भगवान को कह दिया कि भगवान गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ महाराज? गलत व्यक्ति ने अमृत पान कर लिया है। कौन? बोले असुर। भगवान ने देखा तो अरे तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और फेंक दिया, गर्दन काट दिया। लेकिन करते क्या, अब हो तो अब बचता है कि हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम भी इसी तरह पछताते हैं, काट दिया तो क्या, गले से नीचे उतर चुका था अमृत, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, मरा ही नहीं, दो टुकड़ा हो गया तो भी नहीं मरता है, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा देवताओं से मीटिंग करके, देखो भाई ये था तो असुर, आ गया तुम्हारे पंक्ति में, अमृत पान कर ही लिया है, अब इसको असुर के ग्रुप में जाने नहीं देना, है ना? नेता लोग करते हैं ना कि दूसरे के पार्टी के हमारे में आ जाए, है? वोट क्रॉस वोटिंग हुआ है ना अभी राज्यसभा के चुनावों में, सब लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, है? अब दूसरे पार्टी उसको अपने पक्ष में लेने के तरखर में है, जुगाड़ में है, तो जाने नहीं देना, ख्याल रखना। देवताओं ने कहा कि जाने नहीं देंगे, तो क्या करें? बोले अपने ही सर देवता तुल्य बनाकर देवता सराह उसका भाग देकर रखा है। लेकिन तब से लेकर उनको अभी भी, जबकि राहु केतु को भी देवता के ही कोटि में उसकी पूजा होती है, फिर भी उसके अंदर एक टीस भरी हुई है कि इसने, इन दोनों ने इशारा करके हमारे गर्दन कटवा दी। परिणाम क्या होता है? तो समय समय में दोनों के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, तो वो ग्रहण जो लगता है ना, तो हमारे पुरानी मान्यता, तो पौराणिक मान्यता तो ये है, ये वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु, दिवाकर और इंदु, इंदु माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, राहु ग्रस्त, जैसे वश ईर्ष्या के चलते राहु समय समय में कभी सूर्य को ग्रसित करता है, कभी चंद्रमा को ग्रसित करता है, उस प्रसंग को यहां शंकराचार्य जी ने दृष्टांत को लाकर रखा। ये दृष्टांत तो हम लोगों ने पुराण के द्वारा सुना है, और सूर्य में और चंद्रमा में ग्रहण लगता हुआ अपने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए कहा ये दृष्ट को, देखे हुए को, अनुभव में किए हुए को, जाने हुए को, वस्तु प्रयोग करके अनजान को, न देखे हुए को समझना है, इसके लिए दृष्टांत कहते हैं। राहु ग्रस्त दिवाकर।

0: यो भूत्सुसुप्तः पुमान। अमावस्या की रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता है कि नहीं है? अमावस्या की रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता है कि नहीं? अरे भाई, रात्रि में चंद्र ग्रहण लग भी जाएगा तो देखेगा कौन? पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है। ग्रहण लगने से पहले कैसा दिखता है चंद्रमा? पूरा का पूरा दिखता है, उसका प्रकाश सभी को अनुभव में आता है। और उसी पूर्णिमा के रात्रि को जब खग्रास चंद्र ग्रहण होता है, राहु पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेता है, तब दिखता है कि नहीं कि चंद्रमा ग्रहण से ढक गया है, ये दिखता है कि नहीं है? चंद्रमा नहीं दिखता है, चंद्रमा दिखता है पूर्णिमा की रात्रि जब ग्रहण लगा हो, चंद्रमा में पूरा ग्रहण लगा हो तो चंद्रमा दिखेगा नहीं दिखेगा? लेकिन ग्रहण लगा हुआ है, पूरे के पूरे ग्रहण ने चंद्रमा को ढक लिया, ये दिखेगा कि नहीं है? ये भी नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा, चंद्रमा विशेष नहीं दिखेगा लेकिन सामान्य दिखेगा कि यहीं पर चंद्रमा है और यहीं पर ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा को ग्रहण ने पूरी तरह ढक लिया है, ये दिखाने वाला कौन है? चंद्रमा ही है। इसको लेकर बुद्धिष्टों ने कहा कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था और उसी अभाव से, शून्य से सारे जगत पैदा हो गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं कुछ नहीं था, ये बात कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? चंद्रमा ढक गया है, दिख नहीं रहा है, ये बात कैसे पता चलेगा? चंद्रमा से ही पता चलेगा। विशेष चंद्रमा का विशेष अनुभव भले ही न दिखा हो इंद्रियों से, लेकिन फिर भी राहु ग्रस्त चंद्रमा तो दिख रहा है। इसी तरह जैसे विशेष सूर्य न दिख रहा हो लेकिन राहु ग्रस्त सूर्य तो दिख ही रहा है। दिन के समय में पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो उस अवस्था में सूर्य का दर्शन नहीं होता। इन आंखों से सूर्य का दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है सूर्य, पूरी तरह ढक जाता है। कहा जाता है कि आज सूर्य पूरी तरह ढक गया। सूर्य पूरी तरह ढक गया कैसे पता चला? सूर्य से ही पता चला, क्योंकि ये भी दिखेगा तो सूर्य की रोशनी से है। इसी तरह सुसुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा के अवस्था में सारे करणों का उपसंहार हो जाने पर, ध्यान देना इस समय तो करणों का उपसंहार नहीं है, हमारी करणें अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, मन भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, मन विषय, इंद्रियां भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है, इस समय पदार्थ स्पष्ट भान हो रहा है। लेकिन जब गहरी निद्रा में हम चले जाते हैं तो हमारे करणोपसंहरणतः सारे करण करणों का उपसंहार होता है। अविद्या में, अज्ञान में करणों का उपसंहार होता है। आपकी इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रियां, अंतकरण, चतुष्टय, 14 चीज, प्राण नहीं, हाँ, ये 14 चीज अविद्या में लीन हो जाते, उपसंग्रहित होते हैं। और वो जो अविद्या है उस आत्मा को, कुटस्थ को, आत्मा के स्वरूप को ढक देता है। कैसे ढकता है? जैसे राहु सूर्य को या चंद्रमा को ढक लेता है, उसी तरह जिस अविद्या में ये करणे उपसंग्रहित हुए हुए हैं, वो अविद्या उसके स्वरूप को ढक देता है। इसी के चलते अन्य भी नहीं दिखते हैं, वह विशेष रूप में नहीं दिखता है, फिर भी यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर सूर्य नहीं है। ग्रहण के समय में भी सूर्य किस पॉइंट है, किस एंगल में है, यह भान रहता है कि नहीं है? किसके द्वारा? सूर्य ही तो बता रहा है। इसी तरह सुषुप्ति अवस्था में भी एक चीज वहां रहता है, सन्मात्र। करणों का उपसंहार होकर अविद्या के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप का आवृत्त होने पर भी उस आत्मा की केवल सत्ता मात्र का भान होता ही रहेगा, सत्ता का अपलाप नहीं होता है। जैसे राहु के द्वारा ग्रसित होने पर भी सूर्य की सत्ता का भान होता है, सूर्य की सत्ता, जैसे रात्रि में सूर्य की सत्ता का भान नहीं होता, दिन में चंद्रमा की सत्ता का भान नहीं होता है, लेकिन ग्रहण लगने की अवस्था में सूर्य की सत्ता का भान होता है। ग्रहण की अवस्था में ही चंद्रमा की सत्ता का तो राहु अपलाभ नहीं कर सकता है, विशेष चंद्रमा का भले ही भान न हो, चंद्रमा यहां पर है और ग्रहण यहां पर है, ये भान तो होता ही रहता है। इसी तरह सुषुप्ति में आत्मा भान होता ही रहता है, आत्मा की सत्ता को आवृत्त नहीं कर सकता ज्ञान। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो, वहां राहु है, यहां क्या है? माया समाच्छादनात्, माया है। माया राहु की तरह कूटस्थ को आच्छादन कर रही है, लेकिन कूटस्थ को आच्छादन करते हुए भी कूटस्थ के विशेष रूप को आच्छादित करने पर भी सामान्य रूप को आच्छादित नहीं कर सकती है। राहु सूर्य के विशेष को अंश को आच्छादित करने पर भी सूर्य के सामान्य अंश को आच्छादित नहीं कर सकता। सन्मात्र, इसलिए तो सुषुप्ति अवस्था में तीन चीज का स्पष्ट अनुभव होता है। सत्ता का अनुभव होता है, सत्ता का अपलाप नहीं होता, अपनी सत्ता का, हाँ, और की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सन्मात्र अपनी सत्ता का सुषुप्ति अवस्था में भी अपलाप माने निषेध नहीं होता, सन्मात्र। और दूसरी बात, चिन्ह मात्र, चिन्ह चैतन्य का भी भान होता है, ज्ञान का भी भान होता है, ज्ञान ज्ञान भी रहता है और ज्ञान लुप्त नहीं होता है, सत चित और आनंद सुख का भी भान होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं था, सुषुप्ति अवस्था में गहरी निद्रा में तुम थे कि नहीं, तो कोई भले कहे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं था तो नहीं कहेगा, था अपनी सत्ता का उसको भान है, और मैं था ये उसको अनुभव है, और आनंद आया वो कहता है सुखम अहम असोपम, आनंद का भी अपलाप नहीं हुआ है, आनंद को आवृत नहीं किया सुषुप्ति में, इसलिए तो मैं सुख से सोया, कौन जानता था? बोले मैं जानता था, चित का आवृत नहीं किया, मैं था सत का आवरण नहीं किया। तो सत चित आनंद ये तीन भाव और अद्वितीय चार भाव सामान्य रूप से सुषुप्ति अवस्था में आत्मा के स्पष्ट भान सभी को होता है, विशेष भान भले न हो, सामान्य भान सत चित आनंद और अद्वितीयता का भान होता रहता है। राहो ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान। पुमान माने पुरुष जीवात्मा, सुसुप्त अवस्था में अपने सत्ता का अनुभव करता रहता है, अपनी ज्ञान का अनुभव करता रहता है, अपनी आनंद का अनुभव करता रहता है, अपने अद्वितीयता का अनुभव करता रहता है। इसकी व्याख्या फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Nindrasi Nedumara Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम एक महान महाराज संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे जिनका नाम निंद्रसीर नेडुमारन है। तिरुज्ञान संबंदर के युग अर्थात सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में तमिलनाडु के पांडे नरेश निंद्रसीर नेडुमारन थे। उन्हें यह सौभाग्य मिला था कि स्वयं तिरुज्ञान संबंदर ने अपने हाथों से इनके माथे पर भस्म का तिलक लगाया था। इनकी निष्ठावान धर्मपत्नी चोल राज्य कन्या मंगेर करसी थी। मंगेर करसी का शिव में अटूट विश्वास था। उन्हीं के आमंत्रण पर ज्ञान संबंदर पांडिनाडु में आए और शैव धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। निडुमारन पहले जैन धर्मावलंबी थे पर तिरुज्ञान संबंदर से नयन दीक्षा पाकर शैव बने थे। इसके उपरांत उन्होंने अनेक युद्धों में वीरता का प्रदर्शन किया तथा राजनीतिक वातावरण को स्थिर करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर देश के आक्रमणों का भी नेडुमारन ने डटकर मुकाबला किया और सफल रहे। जनता के कल्याण में अपना जीवन लगाने वाले इस नरेश ने धर्म की अपार सेवा की और अंत में ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त की। महेंद्र पल्लव और नरसिंह पल्लव के समकालीन पांडे नेडुमारन ने उल्लिंजम तथा पल्लिल के युद्धों में विजय प्राप्त करके राज्य का विस्तार किया था। इनकी सबसे बड़ी योग्यता जन कल्याण और शैव धर्म का प्रचार करना है। रानी मंगेर करसी अपने पति के धर्म प्रचार कार्यों में विशेष योगदान करती थी। पुराणकार चेक्किलर ने केवल 10 पदों में इनके जीवन और कार्यों का उल्लेख किया है। वास्तव में राजाओं की प्रशस्ति लिखना उनका लक्ष्य नहीं था। वे तो केवल भक्ति और भक्तों का वर्णन कर रहे थे। इसीलिए निंद्रसीर नेडुमारन को शैव भक्तों में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: उसमें से जो निकला हुआ है सुगंध, पादरूपी अरविंद कमल फूल कैसा है वो, उसकी सुगंध कैसी है? दिव्येर भेदो युक्तेर दिव्य गंधई अमंदई, मंद नहीं है, अमंद है यानी तीव्र सुगंधित है। जिसका सुगंध तो मंद हो चुका है ना, तो तीव्र सुगंध तो जिस समय बगीचे में तोड़ोगे उस समय का सुगंध वो तीव्र होगा। तो दुर्गंध से अनभिभूत होने वाली सुगंध या समस्त दुर्गंध को दुर्वासना को अभिभूत करने की क्षमता वाली सुगंध, वो तो भगवान शिव के चरण से ही प्राप्त होगा। उससे अपनी चेता पेटी को सुगंधित बनाओ तब दुर्गंध हटेगा। और जब सुगंधित होगी चेता पेटी तब तक तुम्हें भी वहां रहने में आनंद आएगा, तो परमात्मा को भी आनंद आएगा। वाह क्या कहना है ना। गुरुस्नान जी महाराज आते हैं ना यहां, ये हॉल तो पूरे पूजा के लिए समर्पण होता है ना? बढ़िया मंच लगता है, बढ़िया सिंहासन पूजा के भगवान के दरबार होता है, और उस पूजा में ऐसे इत्र और ऐता सेंट क्या क्या क्या क्या फूल पूरा का पूरा है, सुगंध से भर जाता है कमरा। दरवाजे से अंदर घुसते ही मग मग मग मग। कमरे में आने के बाद कोई काम हो तभी जाना पड़ता है बाध्यता से, नहीं तो बैठे रहो आनंदित हो है? तो तुम्हारा चित्त भी इसी तरह सुगंधित युक्त बनाओ। लेकिन वो सुगंध किससे? पादारविंदम दिव्य गंध, शिव चरण रूपी कमल से निकले हुए सुगंध से सुगंधित करो, तो वो शिव का चरण यानी खुद शिव वहां प्रवेश कर सके। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी अपने चित्त को तुम निर्मल बनाओ। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि भेदा, भेदन करने में समर्थ, हटाने में समर्थ। दिव्य गंधई रमंदही आशा साटी कश्य पादार बिंदम, ये शिव जी का नाम है वो क्या ना? आशा साटी का ये शिव जी का नाम है, कभी सुना है? आज सुन लो। आशा साटी का आकाश रूपी धोती पहने हुए का चरण ले जी, आशा साटी कश्य पादार बिंदम, आकाश रूपी साड़ी माने धोती कपड़े पहने हुए का चरण, उस चरण से निकलने वाली सुगंधी, उस सुगंधी से चेता पेटी अपने चित्त रूपी बक्से को तुम क्या करो? वासिताम सुवासिताम सुगंध से भरो। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ये, हींग नहीं तो हींग बांधा हुआ कपड़ा, हींग निवास। भले उसमें हींग नहीं है लेकिन हींग का वास तो है ना उसमें। इसीलिए जिस कपड़े में हिंग बांधा हो वो कपड़े ही इतना सुगंध है, हिंग की वासना से भरा हुआ हो तो स्वयं हिंग की जो डल्ली है उसमें कितना सुगंध होगा। इसीलिए भगवान को ध्यान करने वाले व्यक्ति का चित्त रूपी पेटी ही सुगंध से भरा हुआ हो तो उसके चरण में और कितनी दिव्य सुगंध होगा है? जिसके चरण की छाप उसके हृदय में पड़ गया उतनी में इतना सुगंध है तो उस चरण में कितनी सुगंध होगी भाई। चेता पेटी बासिता में तनो तु, और आगे बोलते कल्याणीनम सरस चित्र गतिम सवेगम सर्वोंगितज्ञम सर्वोंगितज्ञम अनघम द्रुवलक्षणाढ्यम चेतस्तुरंगम अधिरुह्य स्मराचर।

सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव को जीवंत किया, लेकिन किस रूप में? स्मरण के रूप में जीवंत किया। पुराण का प्रसंग यह है, तुम लोगों ने कई बार सुना है। कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा, और जब भी युद्ध हो तो देवता लोग तो हार जाए, असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर। असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वह तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वो चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं। और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो यह असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब असुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता। और अमृतत्व न कर्मणा न प्रजया धनेन एकेनेव अमृतत्व मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धनेन न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धनेन। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए, न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तो बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वाति मृत्यु में इति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मांग, विचार कर और निमित्त मृत्यु मांग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है, है नहीं? और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं, है? पत्नी मर गई दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्रों से, चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना? ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं तो भगवान विष्णु

0: बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर बिष्टा कर दी और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है, बुरा नहीं मानना, इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है ना, ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है, बोलो? उनको तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो तुम्हें हमें है, हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी। अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं? सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने हैं, सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं, ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो और से न हो। ले जा, अब ना शिव का पुत्र होगा ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, है? हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है, हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना? मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य जी ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव, माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तो माया को शंकराचार्य जी ने कहा अघटित घटना पटी ऐसी माया, अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम माया। तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है ना? और क्योंकि असुर माया के रहस्य को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं असंभव है, असंभव है, है? बोलो। पत्ते में वीर्य को धारण करके पत्ते से बच्चा पैदा करना संभव है कि नहीं? कौन पैदा हुआ पत्ते से? द्रोण। द्रोण का अर्थ पत्ता, और उसमें वीर्य धारण करके जो पैदा हुआ द्रोणाचार्य, ले लीजिए, क्या असंभव है बोलो? भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है? हैं? हो गया ना? अयप्पा स्वामी, अयप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्र स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्र अय्यप्पा, ले जी। मां विष्णु, बाप शिव, क्या असंभव है बोलो? दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकरध्वज, बोलो क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव, माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे, लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना, ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है, लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने, बोलते तो फिर मुकुर जाता वो बोला नहीं, बोले तथास्तु। ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा, वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमिटी का, है तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र कुबेर वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे, तो बोले उसका बेटा शिवजी का बेटा होना चाहिए, तो शिवजी के बेटा के लिए तो शिवजी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिवजी को समाधि से जागना पड़ेगा, शादी करने के लिए शिवजी को अपनी योग्य उनको पसंदीदगी लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा। उनका प्रतिज्ञा, शिवजी की प्रतिज्ञा है, सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं, बस वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव, वही जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका, नारद जी का, और समाधि से जगाएगा कौन, कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है, बड़े बड़े का समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं, ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारी बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है, ख्याल ये रखना कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिवजी तो समाधि में बैठे कैसे शादी करेंगे, बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, एक काम करो, शिवजी भी यहीं कैलाश में है, पड़ोस में ही है, तुम रोज पार्वती को शिवजी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो, उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू लगाए, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है आप कहते हो तो पार्वती के त्रिटी लगा दी, और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गया वहां। अब इसी के आधार में शिवजी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दी कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ, आंख खोलकर देखा समाधि से, आंख खोल के देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया, उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी और उद्दंड की तरह हुआ, देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ, बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ, क्यों, बोले ये उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिव जी से प्रार्थना करे करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र है। अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे, मुख्य समस्या ये है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं? क्यों इच्छा नहीं महाराज? कामदेव मर गया और कहां से इच्छा होगी? बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा। इसलिए कामदेव का नाम क्या है? अनंग। अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा? बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना है, जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा, और स्मरण करते ही उपस्थित होता है इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिवजी का नाम स्मरा हरा पड़ा। तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती का शादी हुई। कामदेव अनंग होकर जीवंत हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से, और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिव जी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़। वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़। भगवान हमारे बंबई के सेठ लोग बरसे ही पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो, फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो? शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ एक ही वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको है? भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किस में आरूढ़ हूं? बोले महाराज दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरस चित्र गतिम सवेगम। देख लो तुम्हारी नंदी, ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, बेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यहां सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम। ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं बोलो है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सवे गम हे, कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने, हां सॉरी गूगल ने, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं। बोलो डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो, जीपीएस की तरह जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाए। आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार किया है मोनिश, गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, अनुमति ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोडक्ट करने की अनुमति उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगित, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसा संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे। बोलो सर्व इंगितज्ञम, सवारी जो संकल्प कर उसके भावना को समझ कर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली, क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं, घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है, अनघम, तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, है? क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षणाढ्यम, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली? हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए। मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो। चर माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे? स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है। चरो जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुह्य चरस मरारे नेत समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घुमो खूब घुमो खूब घुमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस्तुरगा, मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए, महाराज क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: पहले उच्चारण कर लें। त्रय सांख्यम योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनापथजुषम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। पहले शब्दार्थ कर लें इसका। त्रय त्रय बोलते हैं वेद को, जो वैदिक सनातन धर्म है। सांख्यम शब्द का अर्थ यहां पर जो गीता में सांख्यम योगम आता है वह नहीं लेना। सांख्यम का अर्थ है कपिल मुनि प्रणित सांख्य दर्शन। योग है पतंजलि योग, पशुपति मत इस सयु मार्ग है, वैष्णव मत है, प्रभिन्ने एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रस्थान के होने पर भी इदम परम अदह, ये जो हमारा मत है सिद्धांत है दूसरे से श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आपस में जो है ना ये मतभेद करते हैं। इदम परम परम कार्ते सर्वोत्कृष्टम, अदा मल्ल की वह मार्ग, पथ्यम कार्ते हितकारी, रुचिनाम वैचित्र्यात रुचियों के विचित्र होने से भिन्न भिन्न होने से रिजु कुटी नाना पथ जुषाम। रिजु बोलते सरल, कुटी बोलते टेढ़ा, ये नाना रास्तों को सेवन करती हुई निणाम मनुष्यों की पैशाम नदियों के लिए अर्णव बोलते हैं समुद्र ई मल्ल तरह समुद्र की तरह त्वम आप ही को तो एकमात्र है गम्य असी मतलब प्राप्त है। इसका तात्पर्य है चाहे कोई वैदिक मार्ग से चले चाहे सांख्य योग पशुपति वैष्णव किसी मत से वह आपको ही प्राप्त करता है। जैसे नदियां चाहे कोई सीधी जाए चाहे घूम कर जाए नदियों से प्राप्तव्य सागर है। इसी प्रकार से सारे लोग आपको ही प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया शब्दार्थ। जिस प्रकार से मान लीजिए जल है, जल हमें आंख से दिखाई पड़ता है पर उसी जल को कोई पानी कहता है, कोई आप कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है। एक ही पदार्थ को जो आंख से दिखाई दे रहा है उसको कई शब्दों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार से एक ही शिव तत्व है उसको अनेक शब्दों के द्वारा लोग जानते हैं। और एक दूसरी चीज है जो कि अनुभव में आती है पर आंख का विषय नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है सामने बैठी, उस लड़की को हम देख रहे हैं, उसका पिंड है शुद्ध लड़की पिंड, परंतु उसको कोई कहता है कि ये शालिनी है, कोई कहता है ये पप्पू है, कोई बोलता है मेरी बेटी है, कोई कहता है भतीजी है, कोई बोलता है कि मेरी यह पत्नी है, कोई बोलता है मेरी माँ है, कोई बोलता है मेरी चाची है। तो आंख के सामने जो पिंड है, लड़की का पिंड है, वो तो एक है परंतु अनेक शब्दों के द्वारा व्यवहार करते हैं, वैसा वह कार्य भी करती है, वैसा फल भी होता है। इसी प्रकार वह जो तत्व है वह तत्व एक होने पर भी अनेक शब्दों से व्यवहित होकर के तत्त्व अनुसार कार्यक्षम होता है, कामनाओं को परिपूर्ण करता है। दृष्टांत दिया नदी का, जैसे कावेरी जो है पूरब होकर जाती है, गोदावरी सीधी जाती है, नर्मदा नदी पश्चिम होकर सागर में मिलती है, पर सारे नदियों का गंतव्य है सागर। सागर में जाने के बाद इयम गंगा, इयम यमुना, इयम नर्मदा, अयम कावेरी, ये नाम नहीं रहता है न वहां रूप होता है, बस सागर कहलाती हैं। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यों के द्वारा आप ही प्राप्तव्य हैं। रुचिनाम वैचित्र्यम कहा, रुचि शब्द का अर्थ लोग करते हैं इच्छा, च्वाइस करते हैं ना, पर यहां पर ऐसा अर्थ नहीं है। ये तो सामान्य बहुत मोटा अर्थ है। किसी की रुचि है इडली डोसा खाने में, किसी की है सब्जी रोटी, किसी की है आपकी समझियो चावल दाल सब्जी में, ये भी अर्थ है पर ये सामान्य अर्थ, यहां पर ऐसा अर्थ विवक्षित नहीं है। यहां पर रुच शब्द का अर्थ है दीप्ति, रुचा दीप्तव धातु है व्याकरण का, तो रुचा दीप्तव से रुचि शब्द बनता है। दीप्ति शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति बोलते हैं प्रकाश को। तो रुचिनाम वैचित्र्यात का अर्थ है कि सभी जीवात्माओं के ये तेज संस्कार भिन्न भिन्न है। जैसे गणित के अनुसार जब हम कोई वृत्त बनाते हैं ज्यामिति गणित में, तो केंद्र के सहारे जो वृत्त बनते हैं उस वृत्त में बिंदु होता है, उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समान दूरी होती है, पर प्रत्येक बिंदु का मुख अलग अलग होता है, किसी बिंदु का पूरब, किसी का पश्चिम, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण होता है। उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समानता हो, समान दूरी होने पर भी उनका मुख अलग दिशा में होता है। ऐसे यहां पर केंद्र तो परमात्मा है, उस परमात्मा का सभी जीवात्माओं से समान दूरियां हैं, समानता है, परंतु जीवात्माओं का तेज संस्कार अलग अलग है, उसको रुचि शब्द से कहा। एक जीव का दूसरे जीव के साथ ये दो संस्कार भिन्न होने से तालमेल नहीं बैठता है। तो यहां रुचि शब्द का अर्थ है तेज संस्कार, तो तेज संस्कार के भिन्न भिन्न होने के कारण से कोई जो है जीवात्मा भगवान शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु की, कोई देवी की, कोई गुरु की उपासना करता है, पर सब में वही तत्व है। जैसे केंद्र के साथ सारे बिंदु समान दूरी रखते हैं, ऐसे सारे जीवात्माओं का परमात्मा से समान दूरियां हैं, उसमें कोई भेद नहीं। भेद है संस्कार का, उसी को यहां पर रुचि सबसे कह दिया कि रुचिना वैचित्र्यात्, वैचित्र का अर्थ विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से अपने अनुसार उस तत्व की उपासना करता है। अब यहां गिना दिया है त्रयी सांख्यम, त्रयी शब्द है, त्रयी शब्द का अर्थ हमने कल बताया था आपको। त्रयी शब्द का वेद होता है क्योंकि वेद ज्ञान का, उपासना का और क्रिया का प्रतिपादक है। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, वेद में लगभग 80,000 के लगभग 80% मान लीजिए कर्मकांड प्रतिपादक है, 16% समझो उपासना के प्रतिपादक मंत्र मिलते हैं, बहुत कम समझिए मुश्किल से। अब 16 निकाल दो और 80 कितना हो गया है, हाँ, मतलब नाम मात्र ज्ञान कांड के प्रतिपादक वहां पर मंत्र है। तो उन मंत्रों में जहां पर ज्ञान का प्रतिपादन है उसको श्रुति कहते हैं, वेदांत कहते हैं। तो उपासना कर्मकांड का ज्यादा प्रतिपादन है, इसलिए प्रतिपादन है कि मनुष्य के अंदर मल विक्षेप दोष है। मल दोष को दूर करने के लिए तरह तरह का कर्मकांड बतलाया, विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना कांड के मंत्र हैं, और अज्ञान को, आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान कांड के मंत्र हैं। तो त्रयी का अर्थ है इसमें तीन शक्ति, भगवान शिव साक्षात वेद स्वरूप त्रयी स्वरूप हैं। क्योंकि ये जो बुद्धि है, बुद्धि उपाधि के द्वारा ज्ञान होता है और मन उपाधि से इच्छा शक्ति होती है, और मन के बाद ये शरीर प्राण है, प्राण से क्रिया होती है। जो शिव है वह कैसा है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से युक्त है। क्रिया का उपाधि है प्राण, इच्छा की उपाधि है मन, ज्ञान की उपाधि बुद्धि है। निरुपाधिक होकर के भी वही शिव बुद्धि की उपाधि से ज्ञानार्जन करता है, मन की उपाधि से इच्छण करता है, और प्राण को उपाधि से कर्म संपादित करता है। तो कुछ लोग तो त्रयी के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करते हैं। दूसरा मत सांख्यम आता है, सांख्यम का अर्थ है कपिल प्रयुक्त दर्शन। ये सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि आप तत्व का विवेक करो, इससे मुक्त हो जाएगा। तत्व विवेक का अर्थ है कि सत्य पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व का अर्थ होता है प्रकृति, अंतःकरण, और जो पुरुष है असंग चिन्मय आत्मा। तो दोनों का जो अलगाव का ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, असंग हूं, चिन्मय हूं, निर्विशेष हूं, इसको प्रकृति से अलग करके जानना, प्रधान से अलग करके जानना, इससे मुक्त होता है। इनके दर्शन में ये जीवात्मा अनंत है, ये अनेकात्मवादी है। वेदांत एकात्मवादी है, सांख्य अनेकात्मवादी है। उनके मत से संसार भी सत्य है। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि संसार सत्य है, ऐसा ही चलता रहेगा। जितना ये चल रहा व्यवहार, ये व्यवहार जैसा का तैसा चलता रहेगा, और आप अपने को व्यवहार से, संसार से, प्रकृति प्रधान से अलग करके जान लो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन साक्षी आत्मा हूं। परंतु यहां पर ब्रह्म के साथ एकता नहीं होती है। इस सांख्य दर्शन में वेदांत अंतर है। वेदांत कहता है जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म रूप है और जीव नाना नहीं है, जीव एक ही है। एक जीव होने पर भी उपाधियों के नाना होने से नानात्व की प्रतीति है। जैसे एक ही सूर्य है, सूर्य के एक होने पर भी यदि हजार घड़े हैं तो हजार रूप में सूर्य की प्रतीति होती है। सूर्य एक ही, तो तो वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म नापरा है, जीव ब्रह्म एक ही है, जीव नाना नहीं है। ये नानात्व की प्रतीतियां अनुभूतियां उपाधियों से हो रही है, परंतु सांख्य दर्शन जीव को भी नाना माना, उपाधि को भी नाना मानते, वहां पर गौरव दोष है। इसके आगे योग दर्शन आता है। योग दर्शन भी सांख्य के समान अंतर है, मिलता जुलता है, पर योग में सांख्य में थोड़ा अंतर यह है, योग कहता है कि मात्र प्रकृति पुरुष का विवेचन करने से मोक्ष नहीं होगा, आपको अपने चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि नहीं, ये तो उसके अंग है, साधन है, पूरक है। योग का मतलब है चित्त वृत्तियों को एकाग्र निरोध करना। तो योग कहता कि भाई प्रकृति पुरुष का विवेक होने के बावजूद भी जब तक आप अपने वृत्ति को निरोध नहीं करोगे तब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। बस इतना अंतर है योग और सांख्य में। योग भी यही मानता है कि आत्मा अनंत है, अनेक है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है। पर इनके यहां एक विशेषता है, विशेषता यह है कि वह परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है। वह कहता है क्लेश कर्म विपाका आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो पंच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, राग द्वेष अनुकूलता का नाम राग है, प्रतिकूलता का नाम द्वेष है। तो अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश बोलते मरण त्रास और अस्मिता मतलब दृग दृश्य का संबंध, इन सबसे अतिरिक्त विलक्षण जो चैतन्य है वह ईश्वर है। और ईश्वर को योग दर्शन में गुरु ही माना है। सब पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, सब मतलब जो परमात्मा है पूर्व पूर्व का सबका वही गुरु है, परम गुरु है। इसलिए गुरु है क्योंकि काल का उसमें अवच्छेद नहीं, सीमांकन नहीं। अवच्छेद का होता है सीमांकन। परमात्मा में काल की सीमा न होने से सबका वह सद्गुरु है। इस प्रकार से योगी लोग उस तत्व की उपासना करते हैं। इसके बाद आता है त्रय सांख्यम योग पशुपति। पशुपति मत कार्ते शैव मत। यहां शैव वैष्णव का तात्पर्य शिव की पूजा से विष्णु की पूजा से नहीं है। एक शैव बड़ा भारी सिद्धांत है, मत है, ऐसे वैष्णव मत है। तो शैव लोग मानते हैं कि बस ये जीव तो पशु है, पशु के पति भगवान शिव है, उनके उपासना से मोक्ष होता है, उनके आशीर्वाद कृपा से। और वैष्णव लोग मानते हैं कि बस भगवान विष्णु संसार के पालन रक्षा करते हैं, उनके जप पूजा पाठ ध्यान से ही साकेत वैकुंठ लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है। इस प्रकार से वैष्णव लोग कहते हैं। प्रभिन्न प्रस्थाने, ये कहते सबके सब भिन्न, प्रस्थान मतलब मार्ग है, फिर भी सबका गंतव्य वह परमेश्वर ही है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया। जैसे मान लीजिए कोई व्यायाम करता हो, अब व्यायाम जब करते हैं तो प्राचीन काल की परंपरा थी या शास्त्रीय विधि है कि पहले अंग प्रत्यंग का व्यायाम करना चाहिए। अंग मतलब इसे प्रत्येक उंगली का फिर इस जोड़ का, इस तरह से करते करते तब जाके पूरा व्यायाम करना चाहिए। आजकल तो ऐसे कर देते हैं ना, नुकसान करता है। पहले प्रत्येक अंग प्रत्यंग का व्यायाम करे फिर पूरे शरीर का करे, ऐसी परंपरा है। परंतु जो लोग केवल शारीरिक व्यायाम करते हैं या एक एक अंग का करते हैं वह जो है ना सफल नहीं होता है। तो यहां पर भी जो एक एक देवता को उपासना करते हैं तो तत्त्व देवताओं से तत्त्व कामना तो पूरी हो जाती है, परंतु चैतन्य जो स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होता है। वेदांत कहता है कि सब ब्रह्म है, जैसे कि ये अंगुलियां भी शरीर है ना, ये समझो कि पैर भी शरीर है, आंख भी शरीर है, कान भी शरीर, नाक भी, सब शरीर है, शरीर से भिन्न नहीं। केवल एक अंग का आप खास व्यायाम कर लें, चक्रासन है, शीर्षासन है या मयूरासन है, तो इससे तो तीन अंग तो स्वस्थ रहेंगे, परंतु आंख का व्यायाम नहीं करेंगे, आंख का भी होता है व्यायाम, कान का नहीं करेंगे, मुख का भी होता है व्यायाम नहीं करेंगे, उंगली का नहीं करेंगे, जोड़ का नहीं करेंगे, उसमें फिर दर्द होता है कई बार, शिकायत मिलती आजकल। पर कुशल जो व्यायाम करने वाला योगी है वह अंग प्रत्यंग सबका व्यायाम करता है। इसी प्रकार से जो वेदांत है वो कहता है कि सब परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये तो अंग प्रत्यंग है, उसी परमात्मा के सारे ये देवता इतने उपास्य हैं, अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक में ये उपासनाओं के विषय में बतलाया। अब आगे चलें, समय कम है ना, एक श्लोक और कर लें। महोक्ष खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिन कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणं शुरास्तां ताम्रेद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणिहितं नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। अब यहां पर उपास्य भगवान शंकर के स्वरूप को बतला रहे। जब किसी को उपासना करनी हो तो उपास्य का चिंतन करना पड़ता है। चिंतन के पहले उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के चिंतन असंभव है। पहले जानकारी होगी तब जाके चिंतन होता है। तो महोक्ष खटवांगम, महोक्ष का अर्थ होता है हिंदी में क्या, बूढ़ा बैल बोलते हैं ना। खटवांग का अर्थ है खाट का एक पाया, परशु मतलब की कुल्हाड़ी, अजिन मतलब की हाथी का चमड़ा, भस्म फड़ीना का अर्थ हुआ सांप कपाल, इतना ही बरद हे बर देने वाले तंत्रोपकरणम आपके घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। देखो हम लोगों के पास कितना है, भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं है, जरा सी सामग्री है। सुरास्ताम ताम्रेद्धिम, ऐसा अनुय कीजिए, भवद भ्रूप प्रणिहिता ताम ताम्रिद्धि सुराम विदधति, ऐसा अनुय है। भवद मतलब आपके, भ्रू का अर्थ है कृपा कटाक्ष, आपके कृपा कटाक्ष से हिताकार्थ विहिता प्राप्त करके तामताम रिद्धि उन रिद्धियों को समृद्धियों को, जैसे कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भगवान शंकर की उपासना से प्राप्त किया, कुबेर को खजांची बना दिया, इंद्र को इंद्रासन दिया, तो आपके ही कृपा से सारे पदों को ऐश्वर्यों को उपलब्ध होकर के धारण करते हैं। श्री मेहमान में आने वाला है कि भगवान विष्णु हर दिन काशी में मणिकर्णिका घाट है, उस मणिकर्णिका घाट पर 1000 कमल से भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने एक कमल लुप्त कर दिया, पूजा 999 कमल चढ़ाए, एक कमल मिला नहीं, बहुत परेशान, पूरा ढूंढे कहीं नहीं मिला, बेचारे दुखी होकर बैठ गए, क्योंकि बिना 1000 पूजा किए वे कुछ भी नहीं करते थे। उन्हें ध्यान आया कि लोग हमें कहते हैं कमल नयन, तो हमारा नयन भी कमल के समान है, क्यों इसी को चढ़ा दूं। जैसे ही भगवान विष्णु ने कमल अपना निकाल के चढ़ाया, तत्काल भगवान शंकर ने दर्शन दिया, उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, इसीलिए उस जगह का नाम है चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, जहां पर ये घटना घटी वाराणसी में है। तो भगवान विष्णु भी आपकी आराधना करके सुदर्शन चक्र को प्राप्त किए हैं, धारण करते हैं, उससे जगत की रक्षा करते हैं, फिर भी आपके पास केवल इतना ही महोक्ष खटवांग परशु ये सब घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, शिव सबका उत्तर दे दिया। यहां पर जो स्वात्मा राम है वो विषय रूपी मृग तृष्णा में कभी भटकता नहीं। इस संसार का ऐश्वर्य सामग्रियां ये मात मृग तृष्णा है, मृगतृष्णिका से किसी को शांति नहीं मिल सकती। किसी को बोलो ना आप कि भाई देखो संसार बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है, काम चलाऊ है, सपना है, तो अंत में क्या बोलते हैं कि महाराज बात बिल्कुल सही, पर कम से कम काम चलाने के लिए कुछ तो धन चाहिए, कुछ तो मकान दुकान चाहिए। आप काम चलाऊं रेगिस्तान से प्यास बुझा सकते? बहुत गर्मी लग रही, आप परेशान हैं, हम कहें कि भाई रेगिस्तान में बहुत जल दिखाई पड़ रहा, नहा लो और पी लो। जब रेगिस्तान के उस जल में न स्नान हो सकता है न प्यास बुझ सकती है, तो भला इस स्वाप्निक मृग तृष्णिका के समान जो संसार है इससे कैसे शांति मिलेगी? शांति पाना संभव है। इसीलिए नहीं स्वात्मा राम स्वरूप में रमण करते भगवान शंकर, वो किसी चीज की उन्हें अपेक्षा नहीं है। ये तो देखो बहुत मोटा अर्थ हमने बताया, अब देखिए जो इसका वास्तविक सही सही अर्थ है। क्योंकि ये जो उपनिषद है या वेद, ये परोक्षवाद है। परोक्षवाद जानते हैं ना, परोक्षवाद मतलब कि ऐसे कई बार कहना किसी और को है, किसी और को बोलते हैं, डांटना है किसी और को पर डांटते किसी और को, ये परोक्षवाद कहलाता है। एक कहानी सुनोगे आप लोग जो है कि एक बहुत गरीब घर का बालक था, उसके पिताजी हमेशा मार पीते थे, परंतु मेहमान के सामने कैसे कहें कि चल के मार पी लीजिए। तो उसने कहा कि मनुआपुर से धनुका आया है, नहीं धनुकापुर से मनुआ आया है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धनुकापुर से मनुआ, धनुका मल्लय की धान, मनुका मल्लय की माण आया है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। शीतल मल्लय ठंडा हो जाएगा। तो लगा कि ये कोई जो है आदमी आया है, धनुका एक गांव है, मनुआ उसका नाम है, और आके बैठा है, नहीं जाएंगे तो शीतलपुर को चला जाएगा। देखो काम भी बन गया, इज्जत भी रह गई घर की। ऐसे वेद परोक्ष कथन करता है। महोक्ष बोलते बूढ़ा बैल, कल्पना कीजिए भगवान शंकर का बूढ़ा बैल कहीं वाहन संभव है? जब आज का इंसान सवारी नहीं कर सकता तो भगवान शंकर कैसे चल सकते? महोक्ष शब्द का अर्थ है, आप शांति पाठ करते होंगे उसमें आता है, यश छंदशाम ऋषभो, आता है ना शांति पाठ में, छंदसा मतलब जो वेदों का ऋषभ है, वहां ऋषभ है, तो यहां पर वही ऋषभ है। तो छंदों का ऋषभ क्या है? यह छंदसाम ऋषभ अमृत रूप, जो वेदों हर दिन शांति पाठ में पढ़ते हैं हम लोग, शायद यहां है कि नहीं पता नहीं, कैलाश की परंपरा है, 10 शांति मत में एक भी है। तो ऋषभ यहां जो शब्द है उसका अर्थ है अमृत रूप ओंकार। चारों वेदों में श्रेष्ठ है ओंकार जो ऋषभ के समान है। जैसे गायों में ऋषभ की महिमा होती है, सांड की, ऐसे ही वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ है, वह है ओंकार। और इसी बात को पतंजलि जी ने कहा है, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा को बताने वाला ओंकार है। वाहन से आप चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ये जो ओंकार रूपी जो वाहन है इसके द्वारा आप जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते। तो भगवान यही वाहन है, चलने का आधार है। खटवांग, खटवांग शब्द का अर्थ है कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे खाट के चार पाया होते हैं ऐसे ही इसके चार पाया है। तो भगवान शंकर खटवांग एक अंग रखे हैं वह मोक्ष, धर्म अर्थ काम, अर्थ को तो दे दिया कुबेर लक्ष्मी जी को, और कामना दिया कामदेव को, सबके मन में कामना उत्पन्न करता है, और बच गया धर्म। धर्म जो है साक्षात विष्णु रूप है, और अपने आप भगवान शंकर ने मोक्ष रखा अपने पास। इसलिए स्मृति श्रुति कहती है ज्ञानम इच्छित शंकरात, ज्ञान चाहिए मोक्ष चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। तो खटवांग का अर्थ हुआ मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष जो चार पाया है सदाशिव के, उसका एक अंग मोक्ष अपने पास रखा है। परशुर अधीनम, परशु बोलते हैं ये जो कुल्हाड़ी, पर यहां परशु का अर्थ है कि नित्यानित्य असंग शास्त्र के द्वारा नित्यानित्य का विवेक ये परशु है। अजीन का अर्थ है हाथी का चमड़ा। देखो हाथी का जो चमड़ा है ना किसी काम नहीं आता है, सांप का त्वचा काम आता है, गाय का भी आता है, पर हाथी का नहीं आता है। बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, किसी के काम की चीज नहीं, उसको तो भगवान शंकर धारण किए हैं। यहां देखो ये हाथी के चमड़े का अर्थ है कि नाम रूपात्मक जो जगत है ना बिल्कुल बेकार है, वही भगवान का आवरण है। जैसे कपड़ा हमारे शरीर का आवरण है, ढक के रखा है, कपड़ा से माला ढका है, माला अंदर पहने, ऐसे ही नाम रूपात्मक जो ये हाथी का चमड़ा है आपका अजीन है उसको ओढ़ रखे हैं। अंदर भगवान शिव बैठे हैं परंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, जब तक कपड़ा नहीं हटाएंगे तब तक शरीर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे ही ये नाम रूपात्मक ही समझो एक कपड़े हैं। भस्म फणिनम, भस्म का अर्थ यहां पर किया है कि जो गीता में आता है ना कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो यहां पर शरीर का बाध होने के बाद केवल ज्ञान बचता है, तो ज्ञान यहां पर भस्म है। भस्म का ये जो उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं चिता भस्म नहीं है, जहां पर चिता भस्म आता है वहां पर भी चिता का अर्थ है नाम रूपात्मक प्रपंच। उसका बाध होने के बाद जैसे यहां घटालो दृष्टांत में हम इस तौलिया को जला देंगे या जो है कोई चीज जला देंगे, जलाने के बाद केवल भस्म रहता है, कुछ नहीं बचता है। ऐसे चिता को, चिता मतलब कोई व्यक्ति ले लो, व्यक्ति जलने के बाद जब नाम मिट गया रूप मिट गया तो केवल ज्ञान रहता है। तो ज्ञान ही भगवान शंकर का भस्म मतलब की श्रृंगार की वस्तु है। जब लोग पाउडर लगाते हैं ना तो भगवान शंकर ज्ञान में चिन्मय है, यह इसका तात्पर्य शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 19. Thank you.

जाकर के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और विश्राम कर रहा था तो वहां पर जाकर के एक संत पहुंचे। उन्होंने देखा तो वहां पास में कुआं था, उन्होंने भी वहां से जला भी पिया और वो महात्मा भी वहीं वृक्ष की छाया में जाके बैठ गए, वो भी विश्राम करने लगे। मदारी वहां विश्राम कर रहा था, कुछ देर के बाद मदारी उठ के चल पड़ा तो महात्मा ने उससे पूछा, भाई ये बंदर बकरियां तू क्यों रखे? तो उसने कहा, इनसे मैं खेल दिखाता और अपनी जीवनचर्या चलाता। जब उसने ऐसा कहा तो महात्मा ने कहा कि तुम मेरे को भी खेल दिखा दे। उसने कहा, नहीं अब आगे खेल दिखाएंगे जाके। उसने सोचा महात्मा से क्या मिलना, लेकिन महात्मा ने कहा, भाई मेरे को भी तू खेल दिखा दे, तू खेल दिखाने वाला है। तो कहने उसने सोचा, चलो कुछ नहीं महात्मा, कोई जड़ी बूटी ही दे दे, ऐसा सोच करके। और उसने कहा, चलो दिखला देते। महात्मा को खेल दिखाया, महात्मा ने खेल देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, तू तो बड़ा वही खिलाड़ी है। फिर महात्मा ने कहा, अच्छा तूने मेरे को खेल दिखाया, अब तेरे को भी मैं दिखा देता। कहा, दिखा दू? कहा, अच्छा बैठ जा तू। तो उसने सोचा, तो जड़ी बूटी शायद देखेंगे, देंगे और क्या खेल दिखाएंगे। तो कहा, बैठ जा। बैठ गया वो। कहा, तू अपनी आंख बंद कर ले और जब तक मैं न कहूं तब तक आंख खोलना नहीं। ये संकेत किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, 10-20 मिनट हो गए। अब जो है उसने, महात्मा ने कहा नहीं, लेकिन 10-20 मिनट हो गए तो कब तक बंद रखे। उसने खोल के देखा तो महात्मा वहां थे ही नहीं। अब जब महात्मा वहां नहीं थे तो फिर उसने नजर डाली तो उसका जो डमरू आदि था वो भी नहीं था, बंदर और बकरियां थी वो भी नहीं थी, अब सब गायब। सोचने लगा, इसने खेल सीख लिया और हमारे साधन भी ले गया, ये अब अपना खेल दिखाएगा, हमको ठग ले गया। ऐसा विचार करके बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के वहां से चल पड़ा। इतने में क्या हुआ कि वो जब चल पड़ा तो उधर से काफी भीड़ आई। उस भीड़ में आगे एक हाथी था, हाथी की सूंड में एक माला थी और धीरे धीरे उसके समीप में आए, उसने वह माला अपनी सूंड से लेकर के उसके गले में डाल दी और जब गले में डाल दी तो वो तो डरा, हाथी को सामने देख के, भीड़ को देख के, कहा भाई ये सब क्या? तो वहां जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य की ऐसी नियमावली है कि हमारे राज्य में जो है राजा का पुत्र ही जो है राजा नहीं होता है, हमारे यहां से जब राजा खत्म हो जाता है तो ये हाथी जिसके गले में माला डाल देता है और वही राजा हो जाता, आज से तुम हमारे राजा हो गए। भिखारी जो था मदारी सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चलो महात्मा ने इसीलिए शायद गायब किया होगा, राजा बना दिया, गया राजा बन गया। काफी समय तक राज्य में रहा, राज्य वैभव का भोग किया, लेकिन कुछ काल पर्यंत क्या हुआ, कहने लगे किसी दूसरे देश ने उस देश पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहां के सामंत मंत्री आदि आए और उन्होंने कहा कि भाई राजन, दूसरे देश ने चढ़ाई कर दी। तो कहा क्या करना है? कहा युद्ध करना है। तो कहा हमको भी करना पड़ेगा? हाँ आपको तो चलना ही पड़ेगा। बेचारा घबराया, कहां हम मदारी, कहां युद्ध करने लायक हैं, ये अच्छी आपत्ति आ गई, लेकिन चलना पड़ेगा, अब राजा बना। बैठ के हाथी पर आगे चलने लगा और जब चलने लगा उसको लेकर के और वो लोग सब चल के जा रहे थे तो संयोग से वहीं से निकले, जिस वृक्ष के नीचे वो बाबा जी से मिला था वहीं से निकला। और जैसे ही उसने उस स्थल को देखा तो उसे स्मृति आ गई कि इसी वृक्ष के नीचे वह महात्मा मिले थे और उन महात्मा ने हमारी बकरी आदि सब लेकर के और हमें राजा तक पहुंचा दिया। लेकिन तब तक जैसे ही दृष्टि उस तरफ गई तो देखा कि महात्मा उसी के नीचे बैठे हुए, और देखा महात्मा बैठे हुए हैं तो उसके मन में आया कि ये आपत्ति भी शायद जो है महात्मा के पास जाए तो दूर हो जाए, क्योंकि उन्होंने राजा बना दिया और हो सकता है कि तो युद्ध से भी बच जाए। तो उन्होंने कहा चलो मिलने जाकर के पहुंचे, हाथी को खड़ा किया, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा ने कहा रे मदारी तू

0: जैसे ही कहा मदारी तू कहा हां महाराज, आपकी कृपा से ही मैं राजा बन गया। कहा ठीक है, अब कहा अब आपकी कृपा हो जाए तो इस युद्ध से बच जाऊं, ये युद्ध जो है हमको करने जाना पड़ रहा। कहा अच्छा, महात्मा ने कहा आंख बंद कर ली। जैसे ही उसने आंख बंद की तो देखा क्या कि वही बंदरियां, वही बकरियां, वही डमरू और वही बाबा जी, वहां पर न हाथी है न जो राजा है कुछ भी नहीं। जब देखा अपने को तो कहा महाराज ये क्या, कहा बस ये खेल है, तूने हमको खेल दिखाया, हमने तेरे को खेल दिखला दिया। ये तो है दृष्टांत, ये उसी मदारी की बात नहीं। ये सारे जीव ही क्या है, मदारी। जैसे वह उन वनरियों को लेकर के और उन बकरियों को लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करता था, वैसे हम सब लोग भी कर रहे हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। वनरियां क्या हैं? तो क्या बतला है, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, वही क्या हैं? ये वनरियां। और वंदर का स्वभाव क्या होता, चंचलता है, कपि चंचल अति सहज स्वभाव। स्वभाव से ही बंदर कैसा होता, चलायमान होता। हमारी इंद्रियां भी कैसी हैं, चलायमान। और इन्हीं इंद्रियों की चलायमानता नृत्य को लेकर के हम क्या करते, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे। कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का स्वभाव क्या है, बकरियों की तरह से। बकरी कभी जो है खड़ी नहीं रहती, चलती रहेगी और जो आ जाएगा उसी में मुख। हम लोग भी क्या है, संसार में ये पदार्थ देखा तो इसको भी प्राप्त कर लूं, उसको भी लेने के लिए चल पड़ते, जो भी आ जाए हैं, घोल गप्पे खा लिए, फिर पेप्सी पी ली, फिर और आगे बढ़े, और कुछ दिखाई दे दिया का भी ले लो। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब, ये तो एक दृष्टांत है, वनी सारे के सारे जीव क्या है, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को लेकर के ही तो सारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे। और इन कर्म इंद्री ज्ञान इंद्रियों से हटकर के आगे सोचने का अवसर नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा व्यवहार हो रहा है, वो सब किसको लेकर के, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्रियों को लेकर के। लेकिन होता क्या, जैसे उसके जो है वो कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री जब जो है चली गई तो राजा बन गया था, लेकिन जो है उसको वो समझ नहीं पाया, उसी में जो है मस्त हो गया, आसक्त हो गया, तो फिर पुनः वही कर्म इंद्री और वही ज्ञान इंद्री प्राप्त हो गई, उन्हीं में फिर रहा। यही हम लोगों की स्थिति, हम भी उन्हीं में रत रहते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा अवसर भी सुसुप्ति अवस्था आदि में आता है और उस आत्मा का हमें कुछ संदेश मिलता है, जहां पर ये इंद्रियां आदि सब गायब हो जाती हैं, और सब गायब हो जाती हैं तो हमें वहां पर एक आनंद की प्राप्ति होती। लेकिन उस आनंद को हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, पुनः उत्थान अवस्था हो जाती है, पुनः वही ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री, पुनः वही झंझट हमारे सामने आ जाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती। और यही दूसरी तरफ से देख लो, एक तो जो हो गई क्या ये अवस्था, और दूसरी अवस्था क्या तो जन्मना और मरना। पुनः पुनः जन्म मरण हो रहा, लेकिन जन्म मरण में हमने कभी विचार किया, ये जो जन्म हमारा हुआ है वो हमारे द्वारा हुआ, हमारे जान करके हुआ कि अनजान में हुआ? हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो आए हैं इस रूप में, वो किसके द्वारा आए हैं ये हमें किसी को पता? और क्या जब जाओगे तो अभी तो जाकर के तैयारी करके चल देते हो यात्रा, लेकिन जब उस समय मृत्यु आती है तब हम जब जाते हैं तो क्या अपनी इच्छा से जाते? उस समय हम अपनी इच्छा से जाते नहीं, तो आना भी हमारा जो इच्छा से नहीं, और जाना भी इच्छा से। लेकिन इन्हीं पर संकेत करते हैं, इसी को लेकर के हम उस मदारी की तरह से अपना जीवन निर्वाह करते रहते और वही स्थिति पुनः पुनः प्राप्त होती रहती। इसी को जन्म मरणम करके संकेत शंकराचार्य ने कर दिया। अब जो विद्यावान है तो उसके लिए क्या संकेत किया, उसके लिए संकेत कर दिया, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ये संकेत किया, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात उसे आना और जाना नहीं पड़ता। वो उस राज्य को प्राप्त कर लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसी की वास्तविक प्रगति होती है। कहने लगे ये कैसे होता, तो उसके उदाहरण आए। भीष्म पितामह की क्या थी? आई हुई मृत्यु से कहा पितामह भीष्म ने, खड़ी रहो वहीं, अभी जाने का योग नहीं। लेकिन क्या मृत्यु जब चढ़ाई करती है तो हम ऐसा कह पाते? हम ऐसा कह पाते नहीं। जैसे वहां राजा ने चढ़ाई की और यहां भी जो यमराज की जो सेना आती है तो हम जो है उसका कुछ भी बिगाड़ पाते नहीं। ब्रह्मानंद ने एक भजन लिखा, चलो चलो सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना, एक दूत जबर चल आया, किया बीच नगर में ठाना, चलो चलो सखी अब जा, गढ़ कोट किले गिरवाए, सब द्वार बंद करवाए, अब कहीं विधि होए रहाना, चलो चलो सखी अब जा। ये सारी स्थिति हो जाती, चारों तरफ से घेर रहता, हमारे सारे दरवाजों को बंद कर देता और फिर हमारी स्थिति उसमें रह जाती, हमें उसमें से भी निकलना, तो ये स्थिति होती। तो अब ये स्थिति, लेकिन कहने लगे वास्तव में जो हमारे यहां वर्णाश्रम की चर्चा थी, महाराज जी ने एक संन्यास जयंती पर लिखा भी, बड़ा सुंदर चर्चा उसमें आई। तो अब जो वर्णाश्रम की चर्चा थी, उस वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या कहा था? ब्रह्मचर्याद ग्रही भवेद, ग्रही भूत्वा बनी भवेद, बनी भूत्वा प्रव्रजेत, ये जो संकेत किया, इस क्रम से जब व्यक्ति चलता है, इसको खेल को खेल समझ करके चलता है तो उसके जीवन में विद्या आती है, ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो उसका जो है कल्याण हो जाता है, उसको ये मृत्यु परास्त नहीं कर पाता। इसलिए कालिदास ने साहित्य में इसी वेद के रहस्य को लेकर के लिखा, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मुनि वृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। सहसव अवस्था के अंतर्गत जिसने विद्या का अध्ययन किया और युवावस्था में जब विद्या को आपने सीख लिया तो उस विद्या का प्रयोग किया, गृहस्थ आश्रम में उस विद्या का प्रयोग किया और कहने लगे उसमें प्रयोग करके जब प्रैक्टिस हो जाती ना, पहले डॉक्टर की डिग्री तो ले लेते हैं फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उससे प्रयोगात्मक, और जब प्रैक्टिस करते हो प्रयोगात्मक हो जाते हो तो आप भी अनुभवी बन जाते। इसलिए हमारे यहां क्या कहा जाता, एक शब्द है शिक्षा और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या है, दीक्षा। सुशिक्षित और दीक्षित है, शिक्षा और दीक्षा, अंतर यह है। इसलिए गांव में एक बड़ी कहावत कहते हैं कि बेटा पढ़े तो बहुत हो पर गुने, ये कहते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे साथ, हमारे यहां शिक्षा के साथ दीक्षा शब्द पड़ा, अर्थात जो विद्या हमने पढ़ी है उसका प्रयोग, उसकी लेबोरेटरी क्या है, गृहस्थ आश्रम। उसका प्रयोग कहां होता है, गृहस्थ आश्रम, वहां पर हमें क्या श्रम करना है संकेत के। तो शैशव अवस्था में हमने जो है उस विद्या को पढ़ा, कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार से जीवन में हमें चलना है, कैसे कर्म करना है, ये सब जो है उसके अंतर्गत बताया जाता, हमें जीवन यात्रा कैसे करनी है। तो उस जीवन यात्रा को जो है हमने पहले सीखा, शिक्षा ली, और वो शिक्षा का जो श्रम है वो कहां है, वही है ब्रह्मचर्य आश्रम। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हमने वो सीख लिया तो उसके अनुकूल फिर हम मार्गन करते हैं, और वो मार्गन करने की क्रिया कहां है, तो गृहस्थ आश्रम। और जब उसको हमने कर लिया, मार्गन कर लिया, तो क्या होता है, जब आप किसी मार्ग को मार्गन कर लेते हो तो मंजिल पर पहुंचने के स्थिति में आ जाते हो, और जब वहां पहुंच जाते हो तो वहां विश्राम फिर करते हो, क्या करते हो, विश्राम करते हो और अपने मार्ग का और पूर्व का सबका स्मरण करते हो कि हमने जो विद्या सीखी थी उनके अनुसार हम ठीक मंजिल पर पहुंचे। ये वानप्रस्थि है, वानप्रस्थि माने अपने उसी आत्मा का, अपने मंजिल का, अपने लक्ष्य का चिंतन करना, यही वानप्रस्थत्व है। और जब वहां पर आप पहुंच गए तो उस मंजिल में फिर उसके पट खुल गए हैं, उसका कपाट खुल गया, तो उसमें जो बैठा हुआ देव उसके फिर आपको दर्शन भी हो जाता, तो ये संन्यास की स्थिति हो जाती, वहां सब कुछ व्यक्त हो जाता, क्या रह जाता है, जिसको मिलना था उससे मेल हो जाता। तो इसलिए संकेत किया, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवनी विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। फिर वो योग के द्वारा जो है अंत में शरीर छोड़, वो योग क्या है, तो ये जो विद्या है यही उसका योग है, ये जो ज्ञान है यही योग है। इसलिए जब विद्या की स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति होती है, और उसको क्रम के से लेकर के चलता है, तो कहने लगे अंत में जो है उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती, जैसे पितामह भीष्म की हो। और भी चर्चा आती, लोकमान तिलक के विषय में संकेत आता कि उन्होंने जब मृत्यु आई तो उन्होंने भी क्या देखा, उन्होंने देखा इम दूतों की विमल ध्वजा जरा दृष्टि में आती है और युद्ध करती, देह युद्ध करती और देह हारती जाती है। किससे? कहा रोगों से। युद्ध करती, रोगों से देह हारती जाती। ये क्या है? यही तो सारी स्थिति है, यही तो शास्त्र बतलाते हैं। वहां पर जो है उन्होंने भी देखा कि जो है अब इमराज की जो है सेना आ गई, उसकी ध्वजा को देखा और देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी देखा, केवल एक तरफ नहीं देखा। क्या देखा? यह आक्रमण तो हो रहा है और जो है वो सेना युद्ध कर रही है। कहा किससे कर रही? कहा शरीर से। और शरीर में क्या? नाना प्रकार के रोगों को, विकारों को वह ला रही। और यही तो पुरंजनी और पुरंजन की कथा में सुना, प्रज्वार, कालकन्या और ये सब आए तो उसने नगर में आग लगा दी, है ना? ये सब तो किया। और जो जो पंच प्राण जो है इसको वहां सर्प करके कहा, ये भी रक्षा नहीं कर सका। तो ये सब जो है वहां कालकन्या आदि और जो है जो सबकी चर्चा, प्रज्वार आदि की चर्चा की, तो अवस्था के अनुसार क्या है, यही शरीर की स्थिति होती। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है जिसने विद्या प्राप्त की तो वो क्या देखता, वो देखता है कि यमराज की है सेना आ गई है और इससे शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें दृष्टा बना हुआ। और ऐसा जो दृष्टा रहता है वो जानता है कि शरीर जो है वो तो धारण किया हुआ वस्त्र है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन हो रहा है लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो। और ऐसा जो व्यक्ति है वही इस वेदांत के सिद्धांत को प्राप्त कर लेता है, और वेदांत के सिद्धांत को जब प्राप्त कर लेता है, ये उसके जीवन में जब आ जाता है तो क्या होता, तो कहने लगे उसी के जीवन की प्रगति होती है, उसी के जीवन में वह नूतनता आती है, उसी के जीवन में वह रमणीयता आती है, वही प्रगति को प्राप्त होता है। और ये चीज जिसके जीवन में नहीं आ पाती तब तक वह प्रगति को प्राप्त, तो इसके लिए क्या चाहिए? कहा विद्या चाहिए। जैसे वामदारी आदि की चर्चा आई वैसे ही यहां। और भगवान शिव तो कैसे, जो महान है कहो मिलने से वह कैसे मिलेगा, वो तो मिलने के लिए तैयार, और उसके लिए तो इतनी सरस चर्चा कर दी। वहां कहा पत्र है, गीता में भी भगवान कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, तो पत्र फल कामित दे स्थिते सांबे, माने केवल पत्र और फल मात्र से ही वो जो सांब जो स्थित है, जिसकी सदा स्थिति है, वो क्या है, कहा सब कुछ दे देता। और फिर कहा भजसि कृपणम नृपंसु दुस्सेव्य महो कथम चेता, तेरे चित्त के अंदर यह है कि इसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा आप तुझे नहीं सोचना चाहिए, वो तो बड़ा सरल है। और सरलता क्या दिखलाई? कहा जो फल है जहर है जिसे कोई ग्रहण नहीं करता, और वो फल उसको दे दो। और कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के कचड़े पर उगने वाला जो आग जिसका पुष्प किसी भी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता और भी किसी काम नहीं आता, उस पुष्प को चढ़ा दो तो क्या दे देता? तो उसके लिए संकेत किया अर्क दौड़ प्रभृति कुसुमयी अर्चनम ते विधेयम तेन प्राप्य स्मर हर स्वराज्य मोक्ष लक्ष्मी। संकेत किया ये जो भगवान है उनका नाम ही रखा स्मर हर, वो क्या करते हैं, वो कहने लगे जब विद्या आती है ऐसे उसका जब ज्ञान होता है, और वही तीसरा उनका ज्ञान नेत्र भी, तो कहने लगे वहां पर वो सबसे पहले कामना को ही जला देता, और जब कामना को जला तो ऐसा स्मर हर वो क्या देने वाला, कहने लगे यदि कोई राज्य चाहता तो राज्य प्राप्त करा देता, लक्ष्मी चाहता तो लक्ष्मी प्राप्त करा देता, और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष भी प्राप्त करा देता। ऐसा वह देव है, और उस देव से तुम भिन्न नहीं हो, वही देव रूप तुम हो, लेकिन हमने अविद्या के कारण उसको जो है परिधानों के कारण अपने को भिन्न मान ली, और परिधान केवल है खेल के लिए, तो खेल को हम खेल न समझ करके खेल में ही हम आसक्त। अब इस खेल को खेल समझ करके करोगे तब जीवन में जो भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, तब तुम्हारे जीवन में वह कर्म करने की योग्यता आएगी। और वो क्या आएगी? तब जो है नाभिनंदन्ति निष्कर्म्यम, और कहा न कर्मसु अनुसज्जते, तब जो है कर्म में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी और निष्कर्मता भी जो है प्रसन्नता नहीं होगी। क्या मतलब? आप देखते हो कोई कर्म सामने आया और आपने कहा इसको नहीं करेंगे, छोड़ दिया, और छोड़ करके आप प्रसन्न होते तो कहने लगे ऐसा ये निष्कर्मता नहीं है। और आप जो है कर्म ढूंढने जा रहे हो और कर्म ढूंढने जा रहे हो, उसमें कभी सफलता कभी असफलता मिलती है तो कहने लगे वो भी वो नहीं करता। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे जीवन में किसी व्यक्ति दो भाई है और बड़े भाई का विवाह हो रहा, और आजकल लोग भी देखते क्या है कि एक लड़का होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, भाई बहने होंगे तो उनकी शादी करनी पड़ेगी और झंझट रहेगा, इसलिए एक ही लड़का। लेकिन वो पहले क्या होता था, वो भाई भी यदि उसका छोटा भाई पढ़ने में कमजोर है, अन्य योग्यता नहीं है, तो भी उसका जीवन निर्वाह करता, सोचता था छोटा भाई हमारा कर्तव्य है भाई के नाते, ये सोच करके कर्म करता था, उस कर्म से हटता नहीं था, उस कर्म का त्याग नहीं करता। आज हम कर्म का त्याग भी करते है ना, और दूसरी तरफ और उसमें खुश होते, इस झंझट से दूर हो गए, ये निष्कर्मता में। दूसरी तरफ घर में मां बीमार है और मां जो है बीमार है तो उसके सेवा में तो किसको कर दिया, नौकर को कर दिया। हमारा कर्तव्य है वहां सेवा करना, ये कर्म प्राप्त है, लेकिन वहां हमने नौकर को कर दिया, नौकर सेवा करेगा, नर्सों को कर दिया, और हम कहां जा रहे? कहने लगे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में ही। किस लिए? कहा समाज की सेवा करने के लिए। विचार करो वहां क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां तो अखबार में नाम निकलेगा कि ये सेवा करने वाले हैं, यहां हमने सेवा का त्याग किया और वहां सेवा का प्रदर्शन कर रहे, वहां कर्म ढूंढ रहे हैं। तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं? कि हमें जो है ये, तो इस प्रकार से एक तरफ कर्म में आसक्ति होना, वहां कर्म में हमारा आग्रह है और इधर कर्म का हम त्याग कर रहे हैं। तो कर्म के त्याग करने में जो तुम प्रसन्नता समझते हो, कहा कि ये निष्कर्मता नहीं है, और कर्म जो तुम ढूंढ रहे हो वो कर्म भी वास्तव में तुम्हारा जो है दुखदायी होगा, वो भी तुमको यश देने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्म में आसक्ति भी नहीं, दुराग्रह भी नहीं, कर्म को ढूंढता भी नहीं, और आए हुए कर्म का वह परित्याग भी नहीं करता। जो कर्म आ गया है उस कर्म को करता है, और उस कर्म को करते हुए और जो है उसमें आसक्त नहीं होता। इसको उन्होंने कहा नाभिनन्दन्ति निष्कर्म्यम, कर्म को छोड़ने से वह प्रसन्न नहीं होता है और कर्म में कहीं आसक्त भी नहीं। हम तो ढूंढते हमें कर्म मिल जाए और ये हम करें सेवा है, क्योंकि हमारा अखबार में नाम आए, तो ये ऐसी भी आसक्ति उसकी नहीं रहती है। तो कर्म को ढूंढता भी नहीं है और कर्म का त्याग भी नहीं। सुसमो वही जो है सुंदर समन को प्राप्त होता है, सुसमो या परित्यागी, और वही वास्तव में क्या है? त्यागी है। और सो असंसक्त वही क्या है वास्तव में? असंसक्त है। और ऐसा जो असंसक्त है वही कर्म योगी है, और वो कर्म योगी है तो संकेत भगवान ने कर दिया बुद्धि युक्तो जहातीय उवे सुख दुष्कृते, वो दोनों को पाप पुण्य और शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात वहां पर जो है दोनों में उसकी समता हो जाती है, और वो कर्म करते हुए भी वो कर्म उसे लिपायमान नहीं करता। वो व्यक्ति ही प्रगति को प्राप्त होता है और वो व्यक्ति ही है इस मृत्यु काल के अंतर्गत उस मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो योगी कहलाता। ये संकेत कर दिया गया, इसलिए ये हमारे जीवन की प्रगति है, ये हम समझें, और हम अपने में ये न समझें कि ये सामर्थ्य हमारे में कैसी आएगी। तो भगवान ने जो कहा कि त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, ये तो तेरे हृदय की दुर्बलता है, तूने जो विचार धारणा बना रखी है वो तेरी गलत है, अविद्या करता है, इसलिए तेरे जीवन में विद्या आए और विद्या आएगी तब जो बनेगी वो वही वसो पवित्र मसीह। सारे वसुओं को पवित्र करने वाला तू है। अब आगे चर्चा नहीं कल। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: சைவம்.org-இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்க இருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் டி கே பட்டம்மாள் அவர்கள், திருச்சிற்றம்பலம்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ॐ प्रतिसरियाय नमः। ॐ परावरेशरुद्राय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ अलङ्घ्यशक्तये नमः। ॐ इन्द्रध्वंसनिधीशाय

नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ सहस्रचरणाय नमः ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ सर्वदेवमयाय

ॐ अणिमादिगुणेशाय नमः। ॐ पञ्चब्रह्ममयाय नमः। ॐ पुरातनाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ बलप्रमथनाय

नमः ओम परं ज्योतिषे नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम सलिलाय नमः ओम तत्वाधिकाय नमः ओम सर्गाय नमः ओम दीर्घाय नमः ओम श्रग्विणे नमः ओम पांडरांगाय नमः ओम घोराय नमः ओम ब्रह्मरूपिणे नमः ओम निष्कलाय नमः

ॐ भूताय नमः, ॐ पञ्चभूतात्मने नमः, ॐ अनिर्विण्णाय नमः, ॐ तथ्याय नमः, ॐ पापनाशकराय नमः, ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः, ॐ मन्त्रिणे नमः, ॐ अनन्तरूपिणे नमः, ॐ सिद्धसाधकरूपाय नमः, ॐ मेदिनीरूपिणे नमः, ॐ अघण्यप्रथापाय नमः, ॐ सुधाहस्ताय नमः, ॐ श्रीवल्लभाय नमः, ॐ ईध्र्याय नमः, ॐ मधुराय नमः, ॐ उपाधिरहिताय नमः, ॐ सुकृतराशये नमः, ॐ मुनीश्वराय नमः, ॐ शिवानन्दाय नमः, ॐ रिपुघ्नाय नमः, ॐ तेजोराशये नमः, ॐ अनुत्तमाय नमः, ॐ चतुर्मूर्तिवपुस्थाय नमः, ॐ बुद्धीन्द्रियात्मने नमः, ॐ उपद्रवहराय नमः, ॐ प्रियसन्दर्शनाय नमः, ॐ भूतनाथाय नमः, ॐ मूलाय नमः, ॐ वीतरागाय नमः, ॐ नैष्कर्म्याय नमः, ॐ विरूपाय नमः, ॐ षट्चक्राय नमः, ॐ विशुद्धये नमः, ॐ कूलेशाय नमः, ॐ अवनिभर्त्रे नमः, ॐ भुवनेशाय नमः, ॐ हिरण्यभाहवे नमः, ॐ जीववरदाय नमः, ॐ आदिदेवाय नमः, ॐ भाग्याय नमः, ॐ चन्द्रसञ्जीवनाय नमः, ॐ हराय नमः, ॐ बहुरूपाय नमः, ॐ प्रसन्नाय नमः, ॐ आनन्दपूरिताय नमः, ॐ कूटस्थाय नमः, ॐ मोक्षफलाय नमः, ॐ शाश्वताय नमः, ॐ विरागिणे नमः, ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः, ॐ सुषेणाय नमः, ॐ दक्षयज्ञविघातिने नमः, ॐ सर्वात्मने नमः, ॐ विश्वपालाय नमः, ॐ विश्वगर्भाय नमः, ॐ गर्भाय नमः, ॐ देवगर्भाय नमः, ॐ संसारार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे नमः, ॐ मुनिप्रियाय नमः, ॐ खल्याय नमः, ॐ मूलप्रकृतये नमः, ॐ समस्तसिद्धये नमः, ॐ तेजोमूर्तये नमः, ॐ आश्रमस्थापकाय नमः, ॐ वर्णिने नमः, ॐ सुन्दराय नमः, ॐ मृगबाणार्पणाय नमः, ॐ शारदावल्लभाय नमः, ॐ विचित्रमायिने नमः, ॐ अलङ्करिष्णवे नमः, ॐ बहिर्मुखमहादर्पमथनाय नमः, ॐ अष्टमूर्तये नमः, ॐ निष्कलाय नमः, ॐ हव्यभोज्याय नमः, ॐ यज्ञनाथाय नमः, ॐ मेघ्याय नमः, ॐ मुख्याय नमः, ॐ त्रिविष्टाय नमः, ॐ अम्बिकापतये नमः, ॐ महादान्ताय नमः, ॐ सत्यप्रियाय नमः, ॐ सत्याय नमः, ॐ प्रियनित्याय नमः, ॐ नित्यतृप्ताय नमः, ॐ वेदित्रे नमः, ॐ मृदुहस्ताय नमः, ॐ अर्धनारीश्वराय नमः, ॐ कुठारायुधपाणये नमः, ॐ वराहभेदिने नमः, ॐ कङ्कालधारिणे नमः, ॐ महार्थाय नमः, ॐ सुसत्त्वाय नमः, ॐ कीर्तिस्तम्भाय नमः, ॐ कृतागमाय नमः, ॐ वेदान्तपठिताय नमः, ॐ अश्रोत्राय नमः, ॐ श्रुतिमते नमः, ॐ बहुश्रुतिधरा

सर्गस्थितिविनाशानां कर्त्रे नमः ॐ प्रेरकाय नमः ॐ अन्तर्यामिणे नमः ॐ सर्वहृदिस्थाय नमः ॐ चक्रभ्रमणकर्त्रे नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ वामदक्षिणहस्तोत्थलोकेशहरिशालिने नमः ॐ सकलकल्याणदायिने नमः ॐ प्रसवाय नमः ॐ स्वभावोदारधीराय नमः ॐ सूत्रकाराय नमः ॐ विषयार्णवमग्नानां समुद्धरणसेतवे नमः ॐ अस्नेहस्नेहरूपाय नमः ॐ वार्तातिक्रान्तवर्तिने नमः ॐ यत्र सर्वयतः सर्वं सर्वं यत्र तस्मै नमः ॐ महार्णवाय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ भक्तिगम्याय नमः ॐ भक्तानां सुलभाय नमः ॐ दुष्टानां दुष्प्रदर्शाय नमः ॐ विवेकीनां विजयाय नमः ॐ अतर्किताय नमः।

निष्क्रियाय नमः। ओम चंद्रकोटि सुशीतलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम गूढ़स्वरूपाय नमः। ओम दिशांपतये नमः। ओम पराय नमः। ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम समस्ताय नमः। ओम समाधये नमः। ओम एकरूपाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम विश्वनाभिहृदाय नमः। ओम सर्वोत्तमाय नमः। ओम कुल्याय नमः।

ज्ञानाय नमः, ॐ ध्यानरूपाय नमः, ॐ शाश्वतैश्वर्यविभवाय नमः, ॐ प्राणेश्वराय नमः, ॐ सर्वशक्तिधराय नमः, ॐ धर्माधाराय नमः, ॐ धन्याय नमः,

ओम हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ओम दुर्वाससे नमः। ओम षड्विकाररहिताय नमः। ओम देहार्धकांताय नमः। ओम षडूर्मिरहिताय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम भवनाशाय नमः। ओम ताम्राय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम अनंतकोटिब्रह्मांड

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ेक्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिल्लोक इह च एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाचप्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमाचप्यासिषीमहि एतत्ते देवसवितर्यज्ञम् प्राहुर्बृहस्पताये ब्रह्मणे तेना यज्ञमावतेना यज्ञपातिम् तेन मामाव मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तानोतु अरिष्टं यज्ञज्ञसमिमं दाधातु विश्वे ए देवास इह मा आदयन्तामो।

सूर्या या ऊधो अदित्या उपस्था उरुधा आरा पृथिवी यज्ञे अस्मिन् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातु मीता मनासस्पत इमं दे

0: ശിവായ. യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ് റേഡിയോസ്, 24/7 സ്പിരിച്വൽ ചാനൽസ് ഫ്രം ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്. ഓം നമ ശിവായ.
1: ഓം നമ ശിവായ. ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്, ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇൻ ദിസ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ലിസൺ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം, പ്രസന്റഡ് ബൈ സ്വാമി ശ്രീ ആത്മാനന്ദ് ഗിരിജി മഹാരാജ്. താങ്ക് യു. ഓം നമ ശിവായ.
2: ഭഗവാനെ കഹാ കി അച്ഛ സമുദ്രം ഗായ ഭൂ ജാകർ ചുപ് ഗയേ ഹേ, സമുദ്ര സെ നിക്കാൽനെ കാ ഉദ്ഗം കരോ, ഉദ്യത് കരോ, ഉദ്യോഗ് കരോ. ലക്കിൻ വഹ ചീജ്, ക്യോകി സമുദ്ര കാ സാമ്രാജ്യ ഫിർ അസുരോ കെ ഹാത്ത് മേ ഹേ, और उन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत से वो रत्न निकालना है, तो उनको विश्वास में लिए बिना ऐसे होगा तो क्या करें? तो उनके साथ जाओ, संधि करो, ये चीज तुम्हारे साम्राज्य में है और हम इसको निकालने में मदद करते हैं और उसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी मिलेगा, शेयर करेंगे उसमें से, है ना? कहते हैं ना कि अमेरिका के पास जो खनिज तेल है, गैस है, अपार खनिज तेल और गैस है, लेकिन अमेरिका उसको दोहन नहीं कर रहा है, कहते अभी रिजर्व में रखा है, ऐसा सुना है हमने, उसकी नीति है। तो क्या है कि बोले जहां है उनको अपने हाथ में लेकर बोले हम तुम्हारे यहां ऐसा करेंगे, ये प्लांट लगाएंगे, यहां से तेल निकालेंगे, हम भी खरीदेंगे, औरों को भी बेचेंगे, तुम्हें इतना लाभ होगा। ये अरब कंट्री में, और वो लोग आ गए झांसे में और लगाया, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा लिए और खूब दो रन कर रहे हैं और ले रहा है, अपने अमेरिका में भी ले जा रहा है, बाहर भी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? बोले जब ये समाप्त हो जाएगा तब अपना शुरू करेंगे, दुनिया रोती रह जाएगी, अपने ठीक रहेंगे। ये तो जब इराक कुवैत आदि का तेल खत्म होगा ना, तब अमेरिका अपने आके दोहन करेगा। लोग कहते हैं ऐसा उसकी नीति है, हमको उसकी कोई आलोचना करना नहीं, हम फिर वहीं जा रहे हैं 28 तारीख को तो उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, नीति है वो। इसी तरह भगवान ने कहा देवताओं को उनके छत्र का दोहन करना है तो उनसे समझौता करना जरूरी है, तुम्हें भी ये फायदा होगा, ये बताना जरूरी है। अमृत है, वहां से निकालेंगे, कुछ तुम भी ले लेना, कुछ हम भी ले लेंगे, पान करेंगे तो फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा मृत्यु का डर असुरों को होता है। राजी हो गए, लक्ष्मी निकलेगी, अमृत निकलेगा, जहर निकलेगा किसी ने नहीं कहा, सोचा भी नहीं था। अकांड ब्रह्मांड अच्छे चकित, जहर निकलेगा तो कोई भी नहीं सोचा, क्योंकि जहर को रत्न के अंतर्गत किसी ने गिना ही नहीं था, 14 रत्नों में से जहर को गिना ही नहीं था, निकल गया, वो दुर्भाग्य की बात है। वो तो शिव ही संभाल पाए, नहीं तो बात जो है गड़बड़ हो चुकी थी, शिव ही संभाल पाए, नहीं तो गया, खत्म हो गया था। मंथन किया था अमृत के लिए और जहर निकल गया, तब वो राजी हो गए तो समुद्र मंथन हो गया। कहते उसमें से जहर निकला तो सब घबरा गए। अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्या सिद्ध स्त्रीनयन विषम संहृतवत। सभी ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उस विष का संहार कर दिया। उसके बाद जब मंथन शुरू हुए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रत्न निकलने लग गए। उच्च सर्वा निकला, ऐरावत निकला, है ये तो आप लोगों ने सुना है ना, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अमृत लेकर जब धन्वंतरी निकले, लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, सोम निकला, कितनी चीज निकले, कल्पवृक्ष निकला, चिंतामणि निकला। जब अमृत निकला तो सब लोग, मंथन पूरा हो गया क्योंकि उसी के लिए मंथन कर रहे थे, अमृत निकल गया, निकल गया, मंथन छूट गया। अब तो देवता और असुरों में छिना झपटी हुई, असुर लोग कहने लगे कि ये हमारे क्षेत्र से निकला हुआ है, ये समुद्र से, तो इसका पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। देवता लोग कहने लगे कि यहां समुद्र में अमृत है, इसको निकालना चाहिए, पहला प्रस्ताव हमने लाया इसलिए हमको मिलना चाहिए। तुम्हारे क्षेत्र में होने से क्या होता है, तुमको तो पता ही नहीं था। अनुसंधान करके, रिसर्च करके पता लगाया किसने, हमने। निकालना चाहिए प्रस्ताव रखा किसने, हमने, इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। असुर लोग कहने लगे नहीं नहीं हमारे क्षेत्र का है इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। तो छिना झपटी शुरू हो गई। तो आगे आप लोगों को पता ही है कहानी, भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि अरे अरे तुम लोग चिंता न करो भाई, मत लड़ो, दोनों को सबको मिल जाएगा, बैठ जाओ लाइन से, मैं बांटता हूं, बांटती हूं और क्या है? बांटता हूं तो क्या कहेंगे, मोहिनी था ना वो, तो बांटती हूं, मैं बांटती हूं। इतना सुंदर था, सब लोग विश्वास कर गए। सुंदर व्यक्ति को सभी विश्वास करते हैं। बाचा बपुसा वस्त्रेणा, आप लोग पर्सनालिटी बोलते हो ना अंग्रेजी में, वैभवेना, बाचा बपुसा वस्त्रेणा वैभवेना, बाचा वाणी से व्यक्ति की पर्सनालिटी पता चलता है कि ये किस लेवल का है। उसके पहराव वस्त्रों से भी उस व्यक्ति के बारे में अनुमान किया जा सकता है कि यह किस लेवल का है। उसके शरीर की बनावट से भी पता चलता है कि यह किस लेवल का है। उसके बोलने की शैली से पता चलता है कि यह किस लेवल का है। यह अनुमान है। तब बताया कि मोहिनी आ गई और उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, हम बांट देंगे, चलो बैठ जाओ लाइन से। बैठ गए फटाफट। भगवान ने कहा असुरों को, जाकर मोहिनी ने भगवान असुरों को, आजकल करते हैं ना पुलिस वाले ड्राइवरों का, कहीं मदिरा पान करके ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, तो नाक सूंघते हैं, हैं? पुलिस वाले जाके नाक सूंघते हैं, उसके मुंह सूंघते हैं, पता लगाते हैं तूने मदिरा पान किया है ड्राइवर, तेरे लाइसेंस गया। मोहिनी ने नाक सुना असुरों को, अरे तुम लोगों ने मदिरा पान किया था? बोले हां, असुर तो कहेंगे ही नहीं, कहेंगे पिया तो था महाराज, है हर असुर मदिरा पान करता है, और मदिरा पान करता है वो असुर ही है। बोले मदिरा पान करने वाला कहीं अमृत पान कर सकता है? पहले जाओ कुल्ला करो, ब्रूस करो, नहाओ धो, तो बढ़िया वस्त्र पहनकर आओ। देखो देवताओं ने मदिरा पान नहीं किया, कितने स्वच्छ हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने स्वच्छ हैं, तुम लोग भी ऐसे बनकर आओ। मोहिनी थे तो मोहित हो गए असुर भी, बोले तुम ठीक कह रही हो। अब भी जाते हैं, गए कोई दांत मांजने लगा, कोई ब्रश करने लगा, कुछ करने लगा, सब नहाने लगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, और इतनी में भगवान ने इधर बांटना शुरू हो गया, जल्दी आना। वो लोग तो नहाने धोने में ही लगे रहे। जो केवल नहाने धोने में समय बर्बाद करता है उसका नाम क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा समय तो इसको लगता है बाथरूम में, बोलो, माताओं को लगता है, कभी नाग रगड़ेंगे, कभी पांव रगड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, ले नहाने धोने में समय बर्बाद करे वो असुर। भगवान के भजन में इतना समय नहीं दे सकते, नहाने धोने में समय बर्बाद होता है। पूजा करते हो नहीं, बोले फुर्सत ही नहीं होता है। नहाते हो कि नहीं? नहाता हूं, नहाता तो हूं, नहाने में कितना समय लगता है महाराज? दाढ़ी बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लगभग पौना घंटा लगता है। ले जी रोज लगता है पौना घंटा। अब असुर नहीं है तो और क्या है, नहाने में पौना घंटा, अब भजन के लिए पांच मिनट नहीं, लेट हो गया तो क्या करे, बांटना शुरू कर दिया। उधर देखा एक ने, राहु ने, ये तो गड़बड़ हो रहा है, वह पंक्ति शुरू हो गई, फटाफट आ गया, धोती लपेट लपुट के, त्रिपुंड लगा के, और सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। बांटते ही आए, भगवान आए उसके थाली में। आप लोगों ने बड़े बड़े कुंभ मेले में साधुओं का भंडारा देखा है कि नहीं, समझते है? सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, दौड़ते हैं वो मांगने वाला, है सब्जी बोलो, वो तो वहां पहुंच जाता है, फिर लौट कर आता है बेचारा। वो इतनी तेज उनकी सर्विस होती है, वो ट्रेनिंग है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। पांच पांच छह छह हजार की पंक्ति एक ही बार में बांटनी है। साधु लोग ही उसमें परफेक्ट है, ट्रेनिंग लेते हैं। भगवान तो निकल गए, थाल में उसके पड़ गया अमृत। अब उसने विचार किया कि कहीं, क्योंकि जो व्यक्ति गलत है उसके मन में मैं गलत हूं तो हो रहता ही है ना, डर गया। भगवान ने मेरे थाल में दे दिया है, पोल पट्टी खुलने से पहले पी लो। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहने की वो प्रतीक्षा ही नहीं करने लगा। आप लोग भी करते हो ना असुर की तरह, है? थाल कटोरी गिलास सब पहले टेबल में रखता है, परोसने वाला पहले दाल लाके कटोरी में डालता है। तो आप वो कटोरी में डाला नहीं कि चम्मच से दाल शुरू किया, भात नहीं है, अपोषण करना नहीं है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि करना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजते तुगम पापा ये पचंती आत्म कारणात् ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा प्राण समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर। ये सारे अन्न शोधन के मंत्र हैं। सभी चीज थाली में आने के बाद इस प्रकार से यज्ञ करो, तब वो अन्न शुद्ध होगा। अब वो ला के दाल दे दिया कटोरी में, सब्जी लेने गया तो तब तक दाल पीना शुरू कर दिया। अब फिर सब्जी रख के चला गया तो सब्जी खाना शुरू कर दिया। पकौड़े रख के चला गया तो भात लेने गया तो तब तक तो पकौड़े खत्म हो गए। ब्रह्मार्पण कब करेगा बेटा, है? तो इस तरह खाने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे बोलो, है? क्या कहेंगे उसको, आप ही बोलो नाम, जो राम रखना है रख लेना भाई, राहु रख लो, असुर रख लो, है? उसने तो ब्रह्मार्पण प्रतीक्षा ही नहीं की, बस पीना शुरू कर दिया तो सूर्य और चंद्र, ये क्या बात है? ये हमारे संस्कार का, हमारे बिरादरी का नहीं है, ये तो कहीं और कहीं बांटा है, कहीं से आया है बिना संस्कार का। क्या है जरा ध्यान दिया तो, अरे ये तो असुर राहु। भगवान को कह दिया कि भगवान गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ महाराज, गलत व्यक्ति ने अमृत पान कर लिया है। कौन? बोले असुर। भगवान ने देखा तो अरे तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और फेंक दिया, गर्दन काट दिया। लेकिन करते क्या, अब हो तो अब पछताए कि हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम भी इसी तरह पछताते हैं, काट दिया तो क्या, गले से नीचे उतर चुका था अमृत, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, मरा ही नहीं, दो टुकड़ा हो गया तो भी नहीं मरता है, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा देवताओं से मीटिंग करके, देखो भाई ये था तो असुर, आ गया तुम्हारे पंक्ति में, अमृत पान कर ही लिया है, अब इसको असुर के ग्रुप में जाने नहीं देना, है ना? नेता लोग करते हैं ना कि दूसरे के पार्टी के हमारे में आ जाए, है? वोट क्रॉस वोटिंग हुआ है ना अभी राज्यसभा के चुनावों में, सब लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, है? अब दूसरे पार्टी उसको अपने पक्ष में लेने के तरखर में है, जुगाड़ में है, तो जाने नहीं देना, ख्याल रखना। देवताओं ने कहा कि जाने नहीं देंगे, तो क्या करें? बोले आप नहीं सर, देवता तुल्य बनाकर देवता सराह उसका भाग देकर रखा है, लेकिन तब से लेकर उनको अभी भी, जबकि राहु केतु को भी देवता के ही कोटि में उसकी पूजा होती है, फिर भी उसके अंदर एक तीस भरी हुई है कि इसने, इन दोनों ने इशारा करके हमारे गर्दन कटवा दी। परिणाम क्या होता है? तो समय समय में दोनों के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, तो वो ग्रहण जो लगता है ना, तो हमारे पुरानी मान्यता, तो पौराणिक मान्यता तो यह है, ये वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु, दिवाकर और इंदु, इंदु माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, राहु ग्रस्त। जैसे वश ईर्ष्या के चलते राहु समय समय में कभी सूर्य को ग्रसित करता है, कभी चंद्रमा को ग्रसित करता है, उस प्रसंग को यहां शंकराचार्य जी ने दृष्टांत को लाकर रखा। ये दृष्टांत तो हम लोगों ने पुराण के द्वारा सुना है, और सूर्य में और चंद्रमा में ग्रहण लगता हुआ अपने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए कहा ये दृष्ट को, देखे हुए को, अनुभव में किए हुए को, जाने हुए को, वस्तु प्रयोग करके अनजान को, न देखे हुए को समझना है, इसके लिए दृष्टांत कहते हैं। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु।

0: யோ புத் சுசுப்தஹ புமான். அமாவாஸ்யா கி ராத்திரி மே சந்திர கிரகண லக்தா ஹை கி நஹீ? அமாவாஸ்யா கி ராத்திரி மே சந்திர கிரகண லக்தா ஹை கி நஹீ? அரே பாய், ராத்திரி மே சந்திர கிரகண லக் பி ஜாயேகா தோ தேகேகா கௌன்? பூர்ணிமா கி ராத்திரி மே சந்திரமா கா பிரகாஷ் ஹோதா ஹை. கிரகண லக்னே சே பஹலே கேசா திக்தா ஹை சந்திரமா? பூரா கா பூரா திக்தா ஹை. உஸ்கா பிரகாஷ் சபிகோ அனுபவ மே ஆதா ஹை. ஔர் உசி பூர்ணிமா கே ராத்திரி கோ ஜப் கக்ராஸ் சந்திர கிரகண ஹோதா ஹை, ராஹு பூரி தரா சந்திரமா கோ டக் லேதா ஹை, தப் திக்தா ஹை கி நஹீ கி சந்திரமா கிரகண சே டக் கயா ஹை, யே திக்தா ஹை கி நஹீ? சந்திரமா நஹீ திக்தா ஹை? சந்திரமா திக்தா ஹை? பூர்ணிமா கி ராத்திரி ஜப் கிரகண லகா ஹோ சந்திரமா மே, பூரா கிரகண லகா ஹோ தோ சந்திரமா திக்கேகா? நஹீ திக்கேகா. லேக்கின் கிரகண லகா ஹுவா ஹை, பூரே கே பூரே கிரகண நே சந்திரமா கோ டக் லியா, யே திக்கேகா கி நஹீ? ஹை, யே பி நஹீ திக்கேகா? யே தோ திக்கேகா. சந்திரமா விசேஷ நஹீ திக்கேகா, லேக்கின் சாமான்ய திக்கேகா. கி யஹீ பர் சந்திரமா ஹை ஔர் யஹீ பர் கிரகண லகா ஹுவா ஹை, சந்திரமா கோ கிரகண நே பூரி தரஹ டக் லியா ஹை, யே திகானே வாலா கௌன் ஹை? சந்திரமா ஹீ ஹை. இஸ்கோ லேக்கர் புத்தியஸ்டோ நே கஹா கி ஸ்ருஷ்டி கே பஹலே குச் பி நஹீ தா, ஔர் உசி அபாவ சே சுன்ய சே சாரே ஜகத் பைதா ஹோ கயா ஹை. சங்கராச்சாரிய ஜி கஹதே ஹேன் குச் நஹீ தா, யே பாத் கைசே பதா சலேகா? कैसे पता चलेगा? चंद्रमा ढक गया है, दिख नहीं रहा है, ये बात कैसे पता चलेगा? चंद्रमा से ही पता चलेगा. विशेष चंद्रमा का विशेष अनुभव भले ही न दिखा हो इंद्रियों से, लेकिन फिर भी राहु ग्रस्त चंद्रमा तो दिख रहा है. इसी तरह जैसे विशेष सूर्य न दिख रहा हो, लेकिन राहु ग्रस्त सूर्य तो दिख ही रहा है. दिन के समय में पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो उस अवस्था में सूर्य का दर्शन नहीं होता. इन आंखों से सूर्य का दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है सूर्य, पूरी तरह ढक जाता है. कहा जाता है कि आज सूर्य पूरी तरह ढक गया. सूर्य पूरी तरह ढक गया है, कैसे पता चला? सूर्य से ही पता चला, क्योंकि ये भी दिखेगा तो सूर्य की रोशनी से है. इसी तरह सुसुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा के अवस्था में सारे करणों का उपसंहार हो जाने पर, ध्यान देना, इस समय तो करणों का उपसंहार नहीं है. हमारी करणें अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, मन भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, मन विषय इंद्रियां भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं. इस समय पदार्थ स्पष्ट भान हो रहा है, लेकिन जब गहरी निद्रा में हम चले जाते हैं तो हमारे करणोपसंहरणतः सारे करण करणों का उपसंहार होता है. अविद्या में, अज्ञान में करणों का उपसंहार होता है. आपकी इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रियां, अंतकरण, चतुष्टय, चौदह चीज, प्राण नहीं, हाँ, ये चौदह चीज अविद्या में लीन हो जाते, उपसंग्रहित होते हैं. और वो जो अविद्या है उस आत्मा को, कुटस्थ को, आत्मा के स्वरूप को ढक देता है. कैसे ढकता है? जैसे राहु सूर्य को या चंद्रमा को ढक लेता है, उसी तरह जिस अविद्या में ये करणें उपसंग्रहित हुए हुए हैं, वो अविद्या उसके स्वरूप को ढक देता है. इसी के चलते अन्य भी नहीं दिखते हैं, वह विशेष रूप में नहीं दिखता है, फिर भी यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर सूर्य नहीं है, ग्रहण के बेले समय में भी सूर्य किस पॉइंट है, किस एंगल में है, ये भान रहता है कि नहीं है? किसके द्वारा? सूर्य ही तो बता रहा है। इसी तरह सुषुप्ति अवस्था में भी एक चीज वहां रहता है, सन्मात्र। करणों का उपसंहार होकर अविद्या के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप का आवृत्त होने पर भी उस आत्मा की केवल सत्ता मात्र का भान होता ही रहेगा, सत्ता का अपलाप नहीं होता है। जैसे राहु के द्वारा ग्रसित होने पर भी सूर्य की सत्ता का भान होता है, सूर्य की सत्ता, जैसे रात्रि में सूर्य की सत्ता का भान नहीं होता, दिन में चंद्रमा की सत्ता का भान नहीं होता है, लेकिन ग्रहण लगने की अवस्था में सूर्य की सत्ता का भान होता है। ग्रहण की अवस्था में ही चंद्रमा की सत्ता का तो राहु अपलाभ नहीं कर सकता है, विशेष चंद्रमा का भले ही भान न हो, चंद्रमा यहां पर है और ग्रहण यहां पर है, ये भान तो होता ही रहता है। इसी तरह सुषुप्ति में आत्मा भान होता ही रहता है, आत्मा की सत्ता को आवृत्त नहीं कर सकता ज्ञान। राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सदृशो, वहां राहु है, यहां क्या है? माया समाच्छादनात्, माया है, माया राहु की तरह कूटस्थ को आच्छादन कर रही है, लेकिन कूटस्थ को आच्छादन करते हुए भी कूटस्थ के विशेष रूप को आच्छादित करने पर भी सामान्य रूप को आच्छादित नहीं कर सकती है। राहु सूर्य के विशेष को अंश को आच्छादित करने पर भी सूर्य के सामान्य अंश को आच्छादित नहीं कर सकता। सन्मात्र, इसलिए तो सुषुप्ति अवस्था में तीन चीज का स्पष्ट अनुभव होता है, सत्ता का अनुभव होता है, सत्ता का अपलाप नहीं होता, अपनी सत्ता का, हां और की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सन्मात्र अपनी सत्ता का सुषुप्ति अवस्था में भी अपलाप माने निषेध नहीं होता, सन्मात्र। और दूसरी बात चिन्ह मात्र, चिन्ह चैतन्य का भी भान होता है, ज्ञान का भी भान होता है, ज्ञान ज्ञान भी रहता है और ज्ञान लुप्त नहीं होता है, सत चित और आनंद सुख का भी भान होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं था, सुषुप्ति अवस्था में गहरी निद्रा में तुम थे कि नहीं, तो कोई भले कहे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं था तो नहीं कहेगा, था अपनी सत्ता का उसको भान है, और मैं था ये उसको अनुभव है, और आनंद आया वो कहता है सुखम अहम असोपम, आनंद का भी अपलाप नहीं हुआ है, आनंद को आवृत नहीं किया सुषुप्ति में, इसलिए तो मैं सुख से सोया, कौन जानता था? बोले मैं जानता था, चित्त का आवृत नहीं किया, मैं था सत का आवरण नहीं किया। तो सत चित आनंद ये तीन भाव और अद्वितीय चार भाव सामान्य रूप से सुषुप्ति अवस्था में आत्मा के स्पष्ट भान सभी को होता है, विशेष भान भले न हो, सामान्य भान सत चित आनंद और अद्वितीयता का भान होता रहता है। राहो ग्रस्त दिवा करेंदु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान। पुमान माने पुरुष जीवात्मा, सुसुप्त अवस्था में अपने सत्ता का अनुभव करता रहता है, अपनी ज्ञान का अनुभव करता रहता है, अपनी आनंद का अनुभव करता रहता है, अपने अद्वितीयता का अनुभव करता रहता है। इसकी व्याख्या फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायन्मार पुराणम। द टाइटल इज निन्रसे नेडुमार नायनार पुराणम, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगपूर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम एक महान महाराज संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम निन्द्रसीर नेडुमारन है। तिरुज्ञान संबंदर के युग अर्थात सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में तमिलनाडु के पांडे नरेश निन्द्रसीर नेडुमारन थे। उन्हें यह सौभाग्य मिला था कि स्वयं तिरुज्ञान संबंदर ने अपने हाथों से इनके माथे पर भस्म का तिलक लगाया था। इनकी निष्ठावान धर्मपत्नी चोल राज्य कन्या मंगेर करसी थी। मंगेर करसी का शिव में अटूट विश्वास था। उन्हीं के आमंत्रण पर ज्ञान संबंदर पांडिनाडु में आए और शैव धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। निडुमारन पहले जैन धर्मावलंबी थे, पर तिरुज्ञान संबंदर से नयन दीक्षा पाकर शैव बने थे। इसके उपरांत उन्होंने अनेक युद्धों में वीरता का प्रदर्शन किया तथा राजनीतिक वातावरण को स्थिर करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर देश के आक्रमणों का भी निडुमारन ने डटकर मुकाबला किया और सफल रहे। जनता के कल्याण में अपना जीवन लगाने वाले इस नरेश ने धर्म की अपार सेवा की और अंत में ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त की। महेंद्र पल्लव और नरसिंह पल्लव के समकालीन पांडे निडुमारन ने उल्लिंजम तथा पल्लिल के युद्धों में विजय प्राप्त करके राज्य का विस्तार किया था। इनकी सबसे बड़ी योग्यता जन कल्याण और शैव धर्म का प्रचार करना है। रानी मंगेर करसी अपने पति के धर्म प्रचार कार्यों में विशेष योगदान करती थी। पुराणकार चेक्किलर ने केवल 10 पदों में इनके जीवन और कार्यों का उल्लेख किया है। वास्तव में राजाओं की प्रशस्ति लिखना उनका लक्ष्य नहीं था, वे तो केवल भक्ति और भक्तों का वर्णन कर रहे थे। इसीलिए निन्द्रसीर नेडुमारन को शैव भक्तों में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: उसमें से जो निकला हुआ है सुगंध, पाद रूपी अरविंद कमल फूल कैसा है वो, उसकी सुगंध कैसी है? दिव्येर भेदो युक्तेर दिव्य गंधई अमंदई, मंद नहीं है अमंद है, यानी तीव्र सुगंधित है। इसका सुगंध तो मंद हो चुका है ना, तो तीव्र सुगंध तो जिस समय बगीचे में तोड़ोगे उस समय का सुगंध वो तीव्र होगा। तो दुर्गंध से अनभिभूत होने वाली सुगंध या समस्त दुर्गंध को दुर्वासना को अभिभूत करने की क्षमता वाली सुगंध, वो तो भगवान शिव के चरण से ही प्राप्त होगा। उससे अपनी चेता पेटी को सुगंधित बनाओ, तब दुर्गंध हटेगा। और जब सुगंधित होगी चेता पेटी, तब तक तुम्हें भी वहां रहने में आनंद आएगा, तो परमात्मा को भी आनंद आएगा। वाह क्या कहना है ना। गुरुस्नान जी महाराज आते हैं ना यहां, ये हॉल तो पूरे पूजा के लिए समर्पण होता है ना? बढ़िया मंच लगता है, बढ़िया सिंहासन पूजा के भगवान के दरबार होता है, और उस पूजा में ऐसे इत्र और ऐता सेंट क्या क्या क्या क्या फूल पूरा का पूरा है, सुगंध से भर जाता है कमरा। दरवाजे से अंदर घुसते ही मग मग मग मग। कमरे में आने के बाद कोई काम हो तभी जाना पड़ता है बाध्यता से, नहीं तो बैठे रहो आनंदित हो है? तो तुम्हारा चित्त भी इसी तरह सुगंधित युक्त बनाओ। लेकिन वो सुगंध किससे? पादारविंदम दिव्य गंध, शिव चरण रूपी कमल से निकले हुए सुगंध से सुगंधित करो, तो वो शिव का चरण यानी खुद शिव वहां प्रवेश कर सके। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी अपने चित्त को तुम निर्मल बनाओ। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि भेदा, भेदन करने में समर्थ, हटाने में समर्थ। दिव्य गंधई रमंदही आशा साटी कश्य पादारविंदम, ये शिव जी का नाम है वो क्या ना? आशा साटी का, ये शिव जी का नाम है, कभी सुना है? आज सुन लो। आशा साटी का आकाश रूपी धोती पहने हुए का चरण लो जी, आशा साटी कश्य पादारविंदम, आकाश रूपी साड़ी माने धोती कपड़े पहने हुए का चरण, उस चरण से निकलने वाली सुगंधी, उस सुगंधी से चेता पेटी अपने चित्त रूपी बक्से को तुम क्या करो? वासिताम सुवासिताम, सुगंध से भरो। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ये, हींग नहीं तो हींग बांधा हुआ कपड़ा, हींग निवास, भले उसमें हींग नहीं है लेकिन हींग का वास तो है ना उसमें। इसीलिए जिस कपड़े में हिंग बांधा हो कपड़े ही इतना सुगंध है, हिंग की वासना से भरा हुआ हो तो स्वयं हिंग की जो डल्ली है उसमें कितना सुगंध होगा। इसीलिए भगवान को ध्यान करने वाले व्यक्ति का चित्त रूपी पेटी ही सुगंध से भरा हुआ हो तो उसके चरण में और कितनी दिव्य सुगंध होगा है? जिसके चरण की छाप उसके हृदय में पड़ गया उतनी में इतना सुगंध है तो उस चरण में कितनी सुगंध होगी भाई। चेता पेटिम बासिताम में तनो तु, और आगे बोलते हैं, कल्याणीनम सरस चित्र गतिम सवेगम सर्वोंगितज्ञम सर्वोंगितज्ञम अनघम द्रुवलक्षणाढ्यम चेतस्तुरंगम अधिरुह्य चस्मरा चरस्मरारे तेन समस्त जगताम वृषभाधिरूढ़। संबोधन है इस श्लोक में भगवान शिव के बारे में शंकराचार्य जी ने दो संबोधन का प्रयोग किया। एक संबोधन तो है स्मरारे, स्मरा माने काम, कामदेव, कामदेव का शत्रु यानी कामदेव को नष्ट करके दग्ध करने के बाद सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव को जीवंत किया, लेकिन किस रूप में, स्मरण के रूप में जीवंत किया। पुराण का प्रसंग यह है, तुम लोगों ने कई बार सुना है, कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा और जब भी युद्ध हो तो देवता लोग तो हार जाए असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर, असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वह तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वह चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं, और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो ये असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब असुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता, और अमृतत्व न कर्मण न प्रजया धनेन एकेनेव अमृतत्वं मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धनेन न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धनेन। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तो बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में इति नान्य पंता विद्यते अनाय। अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मार्ग विचार कर और निमित्त मृत्यु मार्ग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है नहीं? और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं है? पत्नी मर गई दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्रों से, चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना? ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं तो भगवान विष्णु बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर विष्टा कर दी, और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है, बुरा नहीं मानना। इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है ना? ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है? बोलो, उनको तो कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो तुम्हें हमें है, हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी है? अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं? सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने हैं। सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो और से न हो। ले जा, अब ना शिव का पुत्र होगा ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है। हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है। हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना? मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य जी ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव। माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो माया को शंकराचार्य ने कहा, अघटित घटना पटी ऐसी माया। अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम माया। तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है।

0: भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है? हैं? हो गया ना। अयप्पा स्वामी, अयप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्र स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्र अय्यप्पा।
1: ले जी,
0: मां विष्णु बाप शिव, क्या असंभव है बोलो? दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकर ध्वज बोलो, क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव। माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे, लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना। ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है, लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने। बोलते तो फिर मुकुर जाता वो। बोला नहीं, बोले तथास्तु। ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा? वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमिटी का, है? तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र कुबेर वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे? तो बोले उसका बेटा शिवजी का बेटा होना चाहिए, तो शिवजी के बेटा के लिए तो शिवजी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिवजी को समाधि से जागना पड़ेगा, शादी करने के लिए शिवजी को अपनी योग्य उनको पसंद दिखी लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा? और उनका प्रतिज्ञा, शिवजी की प्रतिज्ञा है, सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं। बस वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव, वही जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका? नारद जी का। और समाधि से जगाएगा कौन? कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। बड़े बड़े का समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं? ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा, तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारी बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है, ख्याल ये रखना कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिवजी तो समाधि में बैठे, कैसे शादी करेंगे? बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, एक काम करो, शिवजी भी यहीं कैलाश में है, पड़ोस में ही है, तुम रोज पार्वती को शिवजी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो, उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू

0: लगाए, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है आप कहते हो तो। पार्वती की ड्यूटी लगा दी और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गए वहां। अब इसी के आधार में शिव जी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दी कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ। आंख खोल कर देखा समाधि से, आंख खोल के देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी और उद्दंड की तरह वह देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ? बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ। क्यों? बोले ये उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र है। अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे। मुख्य समस्या यह है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं? क्यों इच्छा नहीं महाराज? कामदेव मर गया और कहां से इच्छा होगी? बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा। इसलिए कामदेव का नाम क्या है? अनंग। अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा? बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना है, जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा, और स्मरण करते ही उपस्थित होता है इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिवजी का नाम स्मरा हरा पड़ा। तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती का शादी हुई। कामदेव अनंग होकर जीवंत हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिव जी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़। वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़। भगवान हमारे बंबई के सेठ लोग बरसे ही पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो। फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो। शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ा ये की वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको। भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किस में आरूढ़ हूं। बोले महाराज दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरस चित्र गतिम सवेगम। देख लो तुम्हारी नंदी, ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, वेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यार सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम, ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं बोलो है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सवे गम है, कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं। बोलो डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो जीपीएस की तरह, जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाए। आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार किया है मोहनीश, गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, अनुमति ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोडक्ट करने की अनुमति उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगिता, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसा संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे। बोलो सर्व इंगित ज्ञम सवारी जो संकल्प कर उसके भावना को समझ कर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली, क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है। अनघम तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, है? क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षणाढ्यम अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली? हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो। चर माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे? स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है। चर जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुह्य चरस मरारे नेत समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घुमो खूब घुमो खूब घुमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस्तुरगा, मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए, महाराज क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: पहले उच्चारण कर लें। त्रय सांख्यम योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनापथजुषं निणामेको गम्यस् ത്വമശിപയ ശാമരണവ ഇവ. പഹലെ ശബ്ദാർത്ഥ കർ ലേ ഇസ്കാ. ത്രൈ, ത്രൈ ബോൽത്തെ ഹൈ വേദ കോ, ജോ വേദിക സനാതന ധർമ്മ ഹൈ. സാംഖ്യം ശബ്ദ കാ അർത്ഥ യഹാം പർ, ജോ ഗീതാ മേ സാംഖ്യം യോഗം ആതാ ഹൈ വഹ നഹീ ലേനാ. സാംഖ്യം കാ അർത്ഥ ഹൈ കപില മുനി പ്രണിത സാംഖ്യ ദർശൻ. യോഗ ഹൈ പതഞ്ജലി യോഗ. പശുപതി മത് ഇസ് സയു മാർഗ ഹൈ, വൈഷ്ണവ മത് ഹൈ. പ്രഭിന്നെ ഏക ദൂസരെ സേ ഭിന്ന ഭിന്ന ഹൈ. ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രസ്ഥാന കേ ഹോനെ പർ ഭി ഇദം പരം അധഃ, ഈ ജോ ഹമാരാ മത് ഹൈ, സിദ്ധാന്ത ഹൈ, ദൂസരെ സേ ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ. ഇസ് പ്രകാര സേ ആപസ് മേ ജോ ഹൈ നാ, യേ മത്ഭേദ കർത്തേ ഹൈ. ഇദം പരം, പരം കാർത്തെ സർവോത്കൃഷ്ടം. അധ മല്ല കി വഹ മാർഗ. പഥ്യം കാർത്തെ ഹിതകാരി. രുചീനം വൈചിത്ര്യാത്, രുചിയോ കെ വിചിത്ര ഹോനെ സേ, ഭിന്ന ഭിന്ന ഹോനെ സേ, രിജു കുട്ടി നാനാ പഥ ജുസാം. രിജു ബോൽത്തെ സരല, കുട്ടി ബോൽത്തെ ടേഢാ. ഈ നാനാ രാസ്തോ കു സേവന കർത്തി ഹുയി നിണാം മനുഷ്യോ കി പയസാം നദിയോ കെ ലിയെ. അർണ ബോൽത്തെ ഹൈ സമുദ്ര. ഈ മല്ല തര സമുദ്ര കി തര ത്വം ആപ് ഹീ കോ, ഏക മാത്ര ഹൈ ഗമ്യ അസി, മതലബ് പ്രാപ്ത ഹൈ. ഇസ്കാ താത്പര്യ ഹൈ, ചായ കോയി വേദിക മാർഗ സേ ചലേ, ചായ സാംഖ്യ യോഗ പശുപതി വൈഷ്ണവ കിസി മത് സേ, വഹ ആപ് കോ ഹീ പ്രാപ്ത കർത്താ ഹൈ. ജൈസേ നദിയാ, ചായ കോയി സീധി ജായ ചായ ഘൂം കർ ജായ, നദിയോ സേ പ്രാപ്തവ്യ സാഗർ ഹൈ. ഇസി പ്രകാര സേ സാരേ ലോക ആപ് കോ ഹീ പ്രാപ്ത കർത്തേ ഹൈ. യേ തോ ഹോ ഗയാ ശബ്ദാർത്ഥ. ജിസ് പ്രകാര സേ മാന ലീജിയേ ജല ഹൈ, ജല ഹമേ ആഖ സേ ദിഖായി പഡതാ ഹൈ, പർ ഉസി ജല കോ കോയി പാനി കഹതാ ഹൈ, കോയി ആപ് കഹതാ ഹൈ, കോയി വാട്ടർ കഹതാ ഹൈ, കോയി ജല കഹതാ ഹൈ. ഏക ഹീ പദാർത്ഥ കോ ജോ ആഖ സേ ദിഖായി ദേ രഹാ ഹൈ, ഉസ്കോ കൈ ശബ്ദോ സേ പുകാരാ ജാതാ ഹൈ. ഇസി പ്രകാര സേ ഏക ഹീ ശിവ തത്വ ഹൈ, ഉസ്കോ അനേക ശബ്ദോ കേ ദ്വാരാ ലോക ജാനതേ ഹൈ. ഔർ ഏക ദൂസരി ചീജ് ഹൈ ജോ കി അനുഭവ മേ ആതി ഹൈ, പർ ആഖ കാ വിഷയ നഹീ. ജൈസേ മാൻ ലീജിയേ കോയി ലഡ്കി ഹൈ സാമനെ ബൈഠി, ഉസ് ലഡ്കി കോ ഹം ദേഖ് രഹേ, ഉസ്കാ പിണ്ഡ ഹൈ, ഹൈ ശുദ്ധ ലഡ്കി പിണ്ഡ. പരന്തു ഉസ്കോ കോയി കഹതാ ഹൈ കി യേ ശാലിനി ഹൈ, കോയി കഹതാ യേ പപ്പു ഹൈ, കോയി ബോൽതാ ഹൈ മേരി ബേട്ടി ഹൈ, കോയി കഹതാ ഹൈ ഭതീജി ഹൈ, കോയി ബോൽതാ ഹൈ കി മേരി യേ പത്നി ഹൈ, കോയി ബോൽതാ ഹൈ മേരി മാ ഹൈ, കോയി ബോൽതാ ഹൈ മേരി ചാച്ചി ഹൈ. തോ ആഖ കേ സാമനേ ജോ പിണ്ഡ ഹൈ, ലഡ്കി കാ പിണ്ഡ, വോ തോ ഏക ഹൈ. പരന്തു അനേക ശബ്ദോ കേ ദ്വാരാ വ്യവഹാര കർത്തേ ഹൈ, വൈസാ വഹ കാര്യ ഭീ കർത്തീ ഹൈ, വൈസാ ഫല ഭീ ഹോതാ ഹൈ. ഇസി പ്രകാശ വ ജോ തത്വ ഹൈ, വഹ തത്വ ഏക ഹോനെ പർ ഭീ അനേക ശബ്ദോ സേ വ്യവഹൃത ഹോകർ കേ തത്തത് അനുസാര കാര്യക്ഷമ ഹോതാ ഹൈ, കാമനാഓ കോ പരിപൂർണ കർത്താ ഹൈ. ദൃഷ്ടാന് ദിയാ നദി കാ, ജൈസേ കാവേരി ജോ ഹൈ പൂരബ് ഹോകർ ജാതി ഹൈ, ഗോദാവരി സീധീ ജാതി ഹൈ, നർമ്മദാ നദി പശ്ചിമ ഹോകെ സാഗർ മേ മിൽതി ഹൈ. പര സാരേ നദിയോ കാ ഗന്തവ്യ ഹൈ സാഗർ. സാഗർ മേ ജാനേ കേ ബാദ് ഇയം ഗംഗ, ഇയം യമുന, ഇയം നർമ്മദ, അയം കാവേരി, യേ നാമ നഹീ രഹതാ ഹൈ, ന വഹാ രൂപ ഹോതാ ഹൈ, ബസ് സാഗർ കഹലാതീ ഹൈ. ഐസേ ഹീ പ്രത്യേക മനുഷ്യോ കേ ദ്വാരാ ആപ് ഹീ പ്രാപ്തവ്യ ഹൈ. രുചീനം വൈചിത്ര്യം കഹാ, രുചി ശബ്ദ കാ അർത്ഥ ലോക കർത്തേ ഹൈ ഇച്ഛാ, ചോയ്സ് കർത്തേ ഹൈ നാ, പർ യഹാം പർ ഐസാ അർത്ഥ നഹീ ഹൈ. ഇത് സാമാന്യ ബഹുത് മോട്ടാ അർത്ഥ ഹൈ. കിസി കി രുചി ഹൈ ഇഡ്ലി ഡോസാ ഖാനേ മേ, കിസി കി ഹൈ സബ്ജി റോട്ടി, കിസി കി ഹൈ ആപ്കി സംജിയോ ചാവൽ ദാൽ സബ്ജി മേ, യേ ഭി അർത്ഥ ഹൈ, പരേ സാമാന്യ അർത്ഥ. യഹാം പർ ഐസാ അർത്ഥ വിവക്ഷിത നഹീ ഹൈ. യഹാം പർ രുച് ശബ്ദ കാ അർത്ഥ ഹൈ ദീപ്തി. रुचा दीप्तव धातु है व्याकरण का, तो रुचा दीप्तव से रुचि शब्द बनता है. दीप्ति शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति बोलते प्रकाश को. तो रुचि नाम वैचित्र्यात का अर्थ है कि सभी जीवात्माओं के ये तेज संस्कार भिन्न भिन्न है। जैसे गणित के अनुसार जब हम कोई वृत्त बनाते हैं ज्यामिति गणित में, तो केंद्र के सहारे जो वृत्त बनते हैं उस वृत्त में बिंदु होता है, उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समान दूरी होती है, पर प्रत्येक बिंदु का मुख अलग अलग होता है। किसी बिंदु का पूरब, किसी का पश्चिम, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण होता है। उस केंद्र के साथ बिंदुओं की समानता हो, समान दूरी होने पर भी उनका मुख अलग दिशा में होता है। ऐसे यहां पर केंद्र तो परमात्मा है, उस परमात्मा का सभी जीवात्माओं से समान दूरियां हैं, समानता है, परंतु जीवात्माओं का तेज संस्कार अलग अलग है। उसको रुचि शब्द से कहा, एक जीव का दूसरे जीव के साथ ये दो संस्कार भिन्न होने से तालमेल नहीं बैठता है। तो यहां रुचि शब्द का अर्थ है तेज संस्कार। तो तेज संस्कार के भिन्न भिन्न होने के कारण से कोई जो है जीवात्मा भगवान शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु की, कोई देवी की, कोई गुरु की उपासना करता है, पर सब में वही तत्व है। जैसे केंद्र के साथ सारे बिंदु समान दूरी रखते हैं, ऐसे सारे जीवात्माओं का परमात्मा से समान दूरियां हैं, उसमें कोई भेद नहीं। भेद है संस्कार का, उसी को यहां पर रुचि शब्द से कह दिया। रुचिना वैचित्र्यात्, वैचित्र का अर्थ विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से अपने अनुसार उस तत्व की उपासना करता है। अब यहां गिना दिया है त्रयी सांख्यम, त्रयी शब्द है। त्रयी शब्द का अर्थ हमने कल बताया था आपको, त्रयी शब्द का वेद होता है, क्योंकि वेद ज्ञान का, उपासना का और क्रिया का प्रतिपादक है। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड वेद में लगभग 80,000 के लगभग 80% मान लीजिए कर्मकांड प्रतिपादक है, 16% समझो उपासना के प्रतिपादक मंत्र मिलते हैं, बहुत कम समझिए मुश्किल से। अब 16 निकाल दो और 80 कितना हो गया है, हाँ, मतलब नाम मात्र ज्ञान कांड के प्रतिपादक वहां पर मंत्र हैं। तो उन मंत्रों में जहां पर ज्ञान का प्रतिपादन है उसको श्रुति कहते हैं, वेदांत कहते हैं। तो उपासना कर्मकांड का ज्यादा प्रतिपादन है, इसलिए प्रतिपादन है कि मनुष्य के अंदर मल विक्षेप दोष है। मल दोष को दूर करने के लिए तरह तरह का कर्मकांड बतलाया, विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना कांड के मंत्र हैं, और अज्ञान को, आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान कांड के मंत्र हैं। तो त्रयी का अर्थ है इसमें तीन शक्ति, भगवान शिव साक्षात वेद स्वरूप त्रयी स्वरूप है। क्योंकि ये जो बुद्धि है, बुद्धि उपाधि के द्वारा ज्ञान होता है, और मन उपाधि से इच्छा शक्ति होती है, और मन के बाद ये शरीर प्राण है, प्राण से क्रिया होती है। जो शिव है वह कैसा है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से युक्त है। क्रिया का उपाधि है प्राण, इच्छा की उपाधि है मन, ज्ञान की उपाधि बुद्धि है। निरुपाधिक होकर के भी वही शिव बुद्धि की उपाधि से ज्ञानार्जन करता है, मन की उपाधि से इच्छण करता है, और प्राण की उपाधि से कर्म संपादित करता है। तो कुछ लोग तो त्रयी के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करते हैं। दूसरा मत सांख्यम आता है। सांख्यम का अर्थ है कपिल प्रयुक्त दर्शन। ये सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि आप तत्व का विवेक करो, इससे मुक्त हो जाएगा। तत्व विवेक का अर्थ है कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व का अर्थ होता है प्रकृति, अंतःकरण, और जो पुरुष है असंग चिन्मय आत्मा। तो दोनों का जो अलगाव का ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, असंग हूं, चिन्मय हूं, निर्विशेष हूं, इसको प्रकृति से अलग करके जानना, प्रधान से अलग करके जानना, इससे मुक्त होता है। इनके दर्शन में ये जीवात्मा अनंत है, ये अनेकात्मवादी है। वेदांत एकात्मवादी है, सांख्य अनेकात्मवादी है। उनके मत से संसार भी सत्य है। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि संसार सत्य है, ऐसा ही चलता रहेगा। जितना ये चल रहा व्यवहार, ये व्यवहार जैसा का तैसा चलता रहेगा, और आप अपने को व्यवहार से, संसार से, प्रकृति प्रधान से अलग करके जान लो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन साक्षी आत्मा हूं। परंतु यहां पर ब्रह्म के साथ एकता नहीं होती है। इस सांख्य दर्शन में वेदांत अंतर है। वेदांत कहता है जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म रूप है और जीव नाना नहीं है, जीव एक ही है। एक जीव होने पर भी उपाधियों के नाना होने से नानात्व की प्रतीति है। जैसे एक ही सूर्य है, सूर्य के एक होने पर भी यदि हजार घड़े हैं तो हजार रूप में सूर्य की प्रतीति होती है सूर्य एक ही। तो वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म ही ना पर है, जीव ब्रह्म एक ही है, जीव नाना नहीं है। ये नानात्व की प्रतीतियां, अनुभूतियां उपाधियों से हो रही है। परंतु सांख्य दर्शन जीव को भी नाना माना, उपाधि को भी नाना मानते, वहां पर गौरव दोष है। इसके आगे योग दर्शन आता है। योग दर्शन भी सांख्य के समान अंतर है, मिलता जुलता है। पर योग में, सांख्य में थोड़ा अंतर यह है, योग कहता है कि मात्र प्रकृति पुरुष का विवेचन करने से मोक्ष नहीं होगा, आपको अपने चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि नहीं, ये तो उसके अंग है, साधन है, पूरक है। योग का मतलब है चित्त वृत्तियों को एकाग्र निरोध करना। तो योग कहता कि भाई प्रकृति पुरुष का विवेक होने के बावजूद भी जब तक आप अपने वृत्ति को निरोध नहीं करोगे तब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। बस इतना अंतर है योग और सांख्य में। योग भी यही मानता है कि आत्मा अनंत है, अनेक है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है। पर इनके यहां एक विशेषता है, विशेषता यह है कि वह परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है। वह कहता है क्लेश कर्म विपाका आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो पंच क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, राग द्वेष अनुकूलता का नाम राग है, प्रतिकूलता का नाम द्वेष है। तो अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश बोलते मरण त्रास, और अस्मिता मतलब दृग दृश्य का संबंध, इन सबसे अतिरिक्त विलक्षण जो चैतन्य है वह ईश्वर है। और ईश्वर को योग दर्शन में गुरु ही माना है। सब पूर्वेशापि गुरु कालेन अनवच्छेदात, सब मतलब वह जो परमात्मा है, पूर्व पूर्व का सबका वही गुरु है, परम गुरु है। इसलिए गुरु है क्योंकि काल का उसमें अवच्छेद नहीं, सीमांकन नहीं। अवच्छेद का होता है सीमांकन। परमात्मा में काल की सीमा न होने से सबका वह सद्गुरु है। इस प्रकार से योगी लोग उस तत्व की उपासना करते हैं। इसके बाद आता है त्रय सांख्यम योग पशुपति। पशुपति मत कार्ते शैव मत। यहां शैव वैष्णव का तात्पर्य शिव की पूजा से, विष्णु की पूजा से नहीं है। एक शैव बड़ा भारी सिद्धांत है, मत है, ऐसे वैष्णव मत है। तो शैव लोग मानते हैं कि बस ये जीव तो पशु है, पशु के पति भगवान शिव हैं, उनके उपासना से मोक्ष होता है, उनके आशीर्वाद कृपा से। और वैष्णव लोग मानते हैं कि बस भगवान विष्णु संसार के पालन रक्षा करते हैं, उनके जब पूजा पाठ ध्यान से ही साकेत वैकुंठ लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है। इस प्रकार से वैष्णव लोग कहते हैं। प्रभिन्न प्रस्थाने, ये कहते हैं सबके सब भिन्न, प्रस्थान मतलब मार्ग है, फिर भी सबका गंतव्य वह परमेश्वर ही है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया। जैसे मान लीजिए कोई व्यायाम करता हो। अब व्यायाम जब करते हैं तो प्राचीन काल की परंपरा थी या शास्त्रीय विधि है कि पहले अंग प्रत्यंग का व्यायाम करना चाहिए। अंग मतलब इसी प्रत्येक उंगली का, फिर इस जोड़ का, इस तरह से करते करते तब जाके पूरा व्यायाम करना चाहिए। आजकल तो ऐसे कर देते हैं ना, नुकसान करता है। पहले प्रत्येक अंग प्रत्यंग का व्यायाम करे, फिर पूरे शरीर का करे, ऐसी परंपरा है। परंतु जो लोग केवल शारीरिक व्यायाम करते हैं या एक एक अंग का करते हैं, वह जो है ना सफल नहीं होता है। तो यहां पर भी जो एक एक देवता को उपासना करते हैं तो तत्त्व देवताओं से तत्त्व कामना तो पूरी हो जाती है, परंतु चैतन्य जो स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होता है। वेदांत कहता है कि सब ब्रह्म है, जैसे कि ये अंगुलियां भी शरीर है ना, ये समझो कि पैर भी शरीर है, आंख भी शरीर है, कान भी शरीर, नाक भी, सब शरीर है, शरीर से भिन्न नहीं। केवल एक अंग का आप खास व्यायाम कर लें, चक्रासन है, शीर्षासन है या मयूरासन है, तो इससे तो तीन अंग तो स्वस्थ रहेंगे, परंतु आंख का व्यायाम नहीं करेंगे, आंख का भी होता व्यायाम, कान का नहीं करेंगे, मुख का भी होता है व्यायाम नहीं करेंगे, उंगली का नहीं करेंगे, जोड़ का नहीं करेंगे, उसमें फिर दर्द होता है, कई बार शिकायत मिलती है आजकल। पर कुशल जो व्यायाम करने वाला योगी है वह अंग प्रत्यंग सबका व्यायाम करता है। इसी प्रकार से जो वेदांत है वो कहता है कि सब परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये तो अंग प्रत्यंग है, उसी परमात्मा के सारे ये देवता इतने उपास्य अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक में ये उपासनाओं के विषय में बतलाया। अब आगे चलें, समय कम है ना, एक श्लोक और कर लें। महोक्ष खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिन कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणं शुरास्तां ताम्रेद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणिहितं नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। अब यहां पर उपास्य भगवान शंकर के स्वरूप को बतला रहे। जब किसी को उपासना करनी हो तो उपास्य का चिंतन करना पड़ता है। चिंतन के पहले उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के चिंतन असंभव है। पहले जानकारी होगी तब जाके चिंतन होता है। तो महोक्ष खटवांगम, महोक्ष का अर्थ होता है हिंदी में क्या, बूढ़ा बैल बोलते हैं ना। खटवांग का अर्थ है खाट का एक पाया, परशु मतलब की कुल्हाड़ी, अजिन मतलब की हाथी का चमड़ा, भस्म फड़ीना का अर्थ हुआ सांप कपाल, इतना ही बरद हे बर देने वाले तंत्रोपकरणम आपके घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। देखो हम लोगों के पास कितना है, भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं है, जरा सी सामग्री है। सुरास्ताम ताम वृद्धिम, ऐसा अनुय कीजिए, भवद भ्रूप प्रणिहिता ताम ताम वृद्धि सुराम विदधति, ऐसा अनुय है। भवद मतलब आपके, भ्रू का अर्थ है कृपा कटाक्ष, आपके कृपा कटाक्ष से हिताकार ते विहिता प्राप्त करके तामताम रिद्धि उन रिद्धियों को, समृद्धियों को, जैसे कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भगवान शंकर की उपासना से प्राप्त किया, कुबेर को खजांची बना दिया, इंद्र को इंद्रासन दिया, तो आपके ही कृपा से सारे पदों को ऐश्वर्यों को उपलब्ध होकर के धारण करते हैं। श्री मेमन में आने वाला है कि भगवान विष्णु हर दिन काशी में मणिकर्णिका घाट है, उस मणिकर्णिका घाट पर 1000 कमल से भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने एक कमल लुप्त कर दिया, पूजा 999 कमल चढ़ाए, एक कमल मिला नहीं, बहुत परेशान, पूरा ढूंढे कहीं नहीं मिला, बेचारे दुखी होकर बैठ गए, क्योंकि बिना हजार पूजा किए वे कुछ भी नहीं करते थे। उन्हें ध्यान आया कि लोग हमें कहते हैं कमल नयन, तो हमारा नयन भी कमल के समान है, क्यों इसी को चढ़ा दूं। जैसे ही भगवान विष्णु ने कमल अपना निकाल के चढ़ाया, तत्काल भगवान शंकर ने दर्शन दिया, उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, इसीलिए उस जगह का नाम है चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, जहां पर ये घटना घटी वाराणसी में है। तो भगवान विष्णु भी आपकी आराधना करके सुदर्शन चक्र को प्राप्त किए हैं, धारण करते हैं, उससे जगत की रक्षा करते हैं, फिर भी आपके पास केवल इतना ही मोक्ष खटवांग परशु ये सब घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, शिव सबका उत्तर दे दिया। यहां पर जो स्वात्मा राम है वो विषय रूपी मृग तृष्णा में कभी भटकता नहीं। इस संसार का ऐश्वर्य सामग्रियां ये मात्र मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा मृग तृष्णिका से किसी को शांति नहीं मिल सकती। किसी को बोलो ना आप कि भाई देखो संसार तो बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है, काम चलाऊ है, सपना है, तो अंत में क्या बोलते हैं कि महाराज बात बिल्कुल सही, पर कम से कम काम चलाने के लिए कुछ तो धन चाहिए, कुछ तो मकान दुकान चाहिए। आप काम चलाऊ रेगिस्तान से प्यास बुझा सकते, बहुत गर्मी लग रही, आप परेशान हैं, हम कहें कि भाई रेगिस्तान में बहुत जल दिखाई पड़ रहा, नहा लो और पी लो। जब रेगिस्तान के उस जल में न स्नान हो सकता है न प्यास बुझ सकती है, तो भला इस स्वाप्निक मृग तृष्णिका के समान जो संसार है इससे कैसे शांति मिलेगी। शांति पाना संभव है, इसीलिए नहीं स्वात्मा रामम स्वरूप में रमण करते भगवान शंकर, वो किसी चीज की उन्हें अपेक्षा नहीं है। ये तो देखो बहुत मोटा अर्थ हमने बताया, अब देखिए जो इसका वास्तविक सही सही अर्थ है। क्योंकि ये जो उपनिषद है या वेद, ये परोक्षवाद है। परोक्षवाद जानते हैं ना, परोक्षवाद मतलब कि ऐसे कई बार कहना किसी और को है, किसी और को बोलते हैं, डांटना है किसी और को पर डांटते किसी और को, ये परोक्षवाद कहलाता है। एक कहानी सुनोगे आप लोग जो है कि एक बहुत गरीब घर का बालक था, उसके पिताजी हमेशा मार पीते थे, परंतु मेहमान के सामने कैसे कहें कि चल के मार पी लीजिए, तो उसने कहा कि मनुआपुर से धनुका आया है, नहीं धनुकापुर से मनुआ आया है, चलकर मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धनुकापुर से मनुआ, धनुका मल्लय की धान, मनुका मल्लय की माण आया है, चल करके मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, शीतल मल्लय ठंडा हो जाएगा। तो लगा कि ये कोई जो है आदमी आया है, धनुका एक गांव है, मनुआ उसका नाम है, और आके बैठा है, नहीं जाएंगे तो शीतलपुर को चला जाएगा। देखो काम भी बन गया, इज्जत भी रह गई घर की। ऐसे वेद परोक्ष कथन करता है। महोक्ष बोलते बूढ़ा बैल, कल्पना कीजिए भगवान शंकर का बूढ़ा बैल कहीं वाहन संभव है। जब आज का इंसान सवारी नहीं कर सकता तो भगवान शंकर कैसे चल सकते। महोक्ष शब्द का अर्थ है, आप शांति पाठ करते होंगे उसमें आता है, यश छन दशाम ऋषभो, आता है ना शांति पाठ में, छंदसा मतलब जो वेदों का ऋषभ है, वहां ऋषभ है, यहां पर वही ऋषभ है। तो छंदों का ऋषभ क्या है, यह छंदसाम ऋषभो अमृत रूप, जो वेदों हर दिन शांति पाठ में पढ़ते हैं हम लोग, शायद यहां है कि नहीं पता नहीं, कैलाश की परंपरा है, दस शांति मंत्र में एक ये भी है। तो ऋषभ यहां जो शब्द है उसका अर्थ है अमृत रूप ओंकार। चारों वेदों में श्रेष्ठ है ओंकार जो ऋषभ के समान है। जैसे गायों में ऋषभ की महिमा होती है, सांड की, ऐसे ही वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ है, वह है ओंकार। और इसी बात को पतंजलि जी ने कहा है, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा को बताने वाला ओंकार है। वाहन से आप चल करके अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। ये जो ओंकार रूपी जो वाहन है, इसके द्वारा आप जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भगवान का ही वाहन है, चलने का आधार है। खटवांग, खटवांग शब्द का अर्थ है कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे खाट के चार पाया होते हैं ऐसे ही इसके चार पाया है। तो भगवान शंकर खटवांग एक अंग रखे हैं, वह मोक्ष। धर्म अर्थ काम, अर्थ को तो दे दिया कुबेर लक्ष्मी जी को, और कामना दिया कामदेव को, सबके मन में कामना उत्पन्न करता है, और बच गया धर्म। धर्म जो है साक्षात विष्णु रूप है, और अपने आप भगवान शंकर ने मोक्ष रखा अपने पास। इसलिए स्मृति श्रुति कहती है ज्ञानम इच्छित शंकरात, ज्ञान चाहिए मोक्ष चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। तो खटवांग का अर्थ हुआ मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष जो चार पाया है सदाशिव के, उसका एक अंग मोक्ष अपने पास रखा है। परशुर अधीनम, परशु बोलते हैं ये जो कुल्हाड़ी, पर यहां परशु का अर्थ है कि नित्यानित्य असंग शास्त्र के द्वारा नित्यानित्य का विवेक ये परशु है। अजीन का अर्थ है हाथी का चमड़ा। देखो हाथी का जो चमड़ा है ना किसी काम नहीं आता है, सांप का त्वचा काम आता है, गाय का भी आता है, पर हाथी का नहीं आता है। बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, किसी के काम की चीज नहीं। उसको तो भगवान शंकर धारण किए हैं। यहां देखो ये हाथी के चमड़े का अर्थ है कि नाम रूपात्मक जो जगत है ना बिल्कुल बेकार है, वही भगवान का आवरण है। जैसे कपड़ा हमारे शरीर का आवरण है, ढक के रखा है, कपड़ा से माला ढका है, माला अंदर पहने, ऐसे ही नाम रूपात्मक जो ये हाथी का चमड़ा है आपका अजीन है, उसको ओढ़ रखे हैं। अंदर भगवान शिव बैठे हैं परंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। जब तक कपड़ा नहीं हटाएंगे तब तक शरीर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे ही ये नाम रूपात्मक ही समझो कपड़े हैं। भस्म फणिनम, भस्म का अर्थ यहां पर किया है कि जो गीता में आता है ना कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो यहां पर शरीर का बाद होने के बाद केवल ज्ञान बचता है, तो ज्ञान यहां पर भस्म है। भस्म का ये जो उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं चिता भस्म नहीं है, जहां पर चिता भस्म आता है वहां पर भी चिता का अर्थ है नाम रूपात्मक प्रपंच। उसका बाद होने के बाद, जैसे यहां घटालो दृष्टांत में हम इस तौलिया को जला देंगे या जो है कोई चीज जला देंगे, जलाने के बाद केवल भस्म रहता है, कुछ नहीं बचता है। ऐसे चिता को, चिता मतलब कोई व्यक्ति ले लो, व्यक्ति जलने के बाद अब जब नाम मिट गया रूप मिट गया तो केवल ज्ञान रहता है। तो ज्ञान ही भगवान शंकर का भस्म मतलब की श्रृंगार की वस्तु है। जब लोग पाउडर लगाते हैं ना तो भगवान शंकर ज्ञान में चिन्मय है, यह इसका तात्पर्य शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 19. Thank you.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और यदि उस अविद्या की निवृत्ति होके हमें ज्ञान बना रहता है तो वहां हमें किसी प्रकार की कोई भी जो है मने भय या किसी प्रकार की विपत्ति आदि हमारे सामने नहीं आती। और बड़ी विलक्षण बातें हैं और सरल रूप से ऐसे समझो, एक महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत क्या है, एक मदारी जो था, मदारी वो कुछ बकरी और कुछ बंदरियों को लेकर के अपना खेल दिखाता। एक बार वो जो है जाकर के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और विश्राम कर रहा था तो वहां पर जाकर के एक संत पहुंचे। उन्होंने देखा तो वहां पास में कुआं था, उन्होंने भी वहां से जला भी पिया और वो महात्मा भी वहीं वृक्ष की छाया में जाके बैठ गए, वो भी विश्राम करने लगे। मदारी वहां विश्राम कर रहा था, कुछ देर के बाद मदारी उठ के चल पड़ा तो महात्मा ने उससे पूछा, भाई ये बंदर बकरियां तू क्यों रखे? तो उसने कहा, इनसे मैं खेल दिखाता और अपनी जीवनचर्या चलाता। जब उसने ऐसा कहा तो महात्मा ने कहा कि तुम मेरे को भी खेल दिखा दे। उसने कहा, नहीं, अब आगे खेल दिखाएंगे जाके। उसने सोचा महात्मा से क्या मिलना, लेकिन महात्मा ने कहा, भाई मेरे को भी तू खेल दिखा दे, तू खेल दिखाने वाला है। तो कहने उसने सोचा, चलो कुछ नहीं, महात्मा कोई जड़ी बूटी ही दे दे, ऐसा सोच करके। और उसने कहा, चलो दिखला देते। महात्मा को खेल दिखाया, महात्मा ने खेल देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, तू तो बड़ा वही खिलाड़ी है। फिर महात्मा ने कहा, अच्छा तूने मेरे को खेल दिखाया, अब तेरे को भी मैं दिखा देता। कहा, दिखा दू? कहा, अच्छा बैठ जा तू। तो उसने सोचा, तो जड़ी बूटी शायद देखेंगे, देंगे और क्या खेल दिखाएंगे। तो कहा, बैठ जा। बैठ गया वो। कहा, तू अपनी आंख बंद कर ले और जब तक मैं न कहूं तब तक आंख खोलना नहीं। ये संकेत किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, 10-20 मिनट हो गए। अब जो है उसने, महात्मा ने कहा नहीं, लेकिन 10-20 मिनट हो गए तो कब तक बंद रखे। उसने खोल के देखा तो महात्मा वहां थे ही नहीं। अब जब महात्मा वहां नहीं थे तो फिर उसने नजर डाली तो उसका जो डमरू आदि था वो भी नहीं था, बंदर और बकरियां थी वो भी नहीं थी, अब सब गायब। सोचने लगा, इसने खेल सीख लिया और हमारे साधन भी ले गया, ये अब अपना खेल दिखाएगा, हमको ठग ले गया। ऐसा विचार करके बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के वहां से चल पड़ा। इतने में क्या हुआ कि वो जब चल पड़ा तो उधर से काफी भीड़ आई। उस भीड़ में आगे एक हाथी था, हाथी की सूंड में एक माला थी और धीरे धीरे उसके समीप में आए, उसने वह माला अपनी सूंड से लेकर के उसके गले में डाल दी। और जब गले में डाल दी तो वो तो डरा, हाथी को सामने देख के, भीड़ को देख के, कहा, भाई ये सब क्या? तो वहां जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य की ऐसी नियमावली है कि हमारे राज्य में जो है राजा का पुत्र ही जो है राजा नहीं होता है। हमारे यहां से जब राजा खत्म हो जाता है तो ये हाथी जिसके गले में माला डाल देता है और वही राजा हो जाता। आज से तुम हमारे राजा हो गए। भिखारी जो था मदारी सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चलो महात्मा ने इसीलिए शायद गायब किया होगा, राजा बना दिया। गया, राजा बन गया, काफी समय तक राज्य में रहा, राज्य वैभव का भोग किया। लेकिन कुछ काल पर्यंत क्या हुआ, कहने लगे किसी दूसरे देश ने उस देश पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहां के सामंत मंत्री आदि आए और उन्होंने कहा कि भाई राजन, दूसरे देश ने चढ़ाई कर दी। तो कहा, क्या करना है? कहा, युद्ध करना है। तो कहा, हमको भी करना पड़ेगा? हाँ, आपको तो चलना ही पड़ेगा। बेचारा घबराया, कहां हम मदारी, कहां युद्ध करने लायक हैं, ये अच्छी आपत्ति आ गई। लेकिन चलना पड़ेगा, अब राजा बना, बैठ के हाथी पर आगे चलने लगा। और जब चलने लगा उसको लेकर के, और वो लोग सब चल के जा रहे थे, तो संयोग से वहीं से निकले, जिस वृक्ष के नीचे वो बाबा जी से मिला था वहीं से निकला। और जैसे ही उसने उस स्थल को देखा तो उसे स्मृति आ गई कि इसी वृक्ष के नीचे वो महात्मा मिले थे, और उन महात्मा ने हमारी बकरी आदि सब लेकर के और हमें राजा तक पहुंचा दिया। लेकिन तब तक जैसे ही दृष्टि उस तरफ गई तो देखा कि महात्मा उसी के नीचे बैठे हुए, और देखा महात्मा बैठे हुए हैं तो उसके मन में आया कि ये आपत्ति भी शायद जो है महात्मा के पास जाए तो दूर हो जाए, क्योंकि उन्होंने राजा बना दिया और हो सकता है कि तो युद्ध से भी बच जाए। तो उन्होंने कहा चलो मिलने, जाकर के पहुंचे, हाथी को खड़ा किया, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा ने कहा रे मदारी तू, जैसे ही कहा मदारी तू, कहा हां महाराज आपकी कृपा से ही मैं राजा बन गया। कहा ठीक है, अब कहा अब आपकी कृपा हो जाए तो इस युद्ध से बच जाऊं, ये युद्ध जो है हमको करने जाना पड़ रहा। कहा अच्छा, महात्मा ने कहा आंख बंद कर ली। जैसे ही उसने आंख बंद की तो देखा क्या कि वही बंदरियां, वही बकरियां, वही डमरू और वही बाबा जी, वहां पर न हाथी है न जो राजा है कुछ भी नहीं। जब देखा अपने को तो कहा महाराज ये क्या, कहा बस ये खेल है, तूने हमको खेल दिखाया, हमने तेरे को खेल दिखला दिया। ये तो है दृष्टांत, ये उसी मदारी की बात नहीं, ये सारे जीव ही क्या है मदारी। जैसे वह उन वनरियों को लेकर के और उन बकरियों को लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करता था, वैसे हम सब लोग भी कर रहे, इससे अधिक और कुछ नहीं। वनरियां क्या हैं तो क्या बतलाया, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वही क्या हैं, ये वनरियां। और वंदर का स्वभाव क्या होता, चंचलता है, कपि चंचल अति सहज स्वभाव, स्वभाव से ही बंदर कैसा होता, चलायमान होता। हमारी इंद्रियां भी कैसी हैं, चलायमान, और इन्हीं इंद्रियों की चलायमानता नृत्य को लेकर के हम क्या करते, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे। कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का स्वभाव क्या है, बकरियों की तरह से, बकरी कभी जो है खड़ी नहीं रहती, चलती रहेगी और जो आ जाएगा उसी में मुख। हम लोग भी क्या है, संसार में ये पदार्थ देखा तो इसको भी प्राप्त कर लूं, उसको भी लेने के लिए चल पड़ते, जो भी आ जाए हैं, गोलगप्पे खा लिए, फिर पेप्सी पी ली, फिर और आगे बढ़े, और कुछ दिखाई दे दिया काया भी ले लो। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब, ये तो एक दृष्टांत है, वनी सारे के सारे जीव क्या है, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को लेकर के ही तो सारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे। और इन कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से हटकर के आगे सोचने का अवसर नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा व्यवहार हो रहा है, वो सब किसको लेकर के, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को लेकर के। लेकिन होता क्या, जैसे उसके जो है वो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जब जो है चली गई तो राजा बन गया था, लेकिन जो है उसको वो समझ नहीं पाया, उसी में जो है मस्त हो गया, आसक्त हो गया, तो फिर पुनः वही कर्म इंद्रिय और वही ज्ञान इंद्रिय प्राप्त हो गई, उन्हीं में फिर रहा। यही हम लोगों की स्थिति, हम भी उन्हीं में रत रहते हैं, और कभी कभी हमें ऐसा अवसर भी सुसुप्ति अवस्था आदि में आता है

हुआ है वो हमारे द्वारा हुआ, हमारे जान करके हुआ कि अनजान में हुआ। हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो आए हैं इस रूप में, वो किसके द्वारा आए हैं ये हमें किसी को पता? और क्या जब जाओगे तो अभी तो जाकर के तैयारी करके चल देते हो यात्रा, लेकिन जब उस समय मृत्यु आती है तब हम जब जाते हैं तो क्या अपनी इच्छा से जाते? उस समय हम अपनी इच्छा से जाते नहीं। तो आना भी हमारा जो इच्छा से नहीं, और जाना भी इच्छा से, लेकिन इन्हीं पर संकेत करते हैं। इसी को लेकर के हम उस मदारी की तरह से अपना जीवन निर्वाह करते रहते और वही स्थिति पुनः पुनः प्राप्त होती रहती। इसी को जन्म मरणम करके संकेत शंकराचार्य ने कर दिया। अब जो विद्यावान है तो उसके लिए क्या संकेत किया? उसके लिए संकेत कर दिया न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ये संकेत किया। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात उसे आना और जाना नहीं पड़ता। वो उस राज्य को प्राप्त कर लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसी की वास्तविक प्रगति होती है। कहने लगे ये कैसे होता? तो इसके उदाहरण आए। भीष्म पितामह की क्या थी? आई हुई मृत्यु से कहा पितामह भीष्म ने, खड़ी रहो वहीं, अभी जाने का योग नहीं। लेकिन क्या मृत्यु जब चढ़ाई करती है तो हम ऐसा कह पाते? हम ऐसा कह पाते नहीं। जैसे वहां राजा ने चढ़ाई की और यहां भी जब यमराज की जो सेना आती है तो हम जो है उसका कुछ भी बिगाड़ पाते नहीं। ब्रह्मानंद ने एक वजन लिखा, चलो चलो सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। एक दूत जबर चल आया, किया बीच नगर में ठाना, चलो चलो सखी अब जा। गढ़ कोट किले गिरवाए, सब द्वार बंद करवाए, अब कहीं भी होए रहाना, चलो चलो सखी अब जा। ये सारी स्थिति हो जाती, चारों तरफ से घेर रहता, हमारे सारे दरवाजों को बंद कर देता और फिर हमारी स्थिति उसमें रह जाती, हमें उसमें से भी निकलना। तो ये स्थिति होती, तो अब ये स्थिति। लेकिन कहने लगे वास्तव में जो हमारे यहां वर्णाश्रम की चर्चा थी, महाराज जी ने एक संध्या जयंती पर लिखा भी, बड़ा सुंदर चर्चा उसमें आई। तो अब जो वर्णाश्रम की चर्चा थी, उस वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या कहा था? ब्रह्मचर्याद ग्रही भवेद ग्रही भूतवा बनी भवेद बनी भूतवा प्रब्रजेत, ये जो संकेत किया, इस क्रम से जब व्यक्ति चलता है, इसको खेल को खेल समझ करके चलता है तो उसके जीवन में विद्या आती है, ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो उसका जो है कल्याण हो जाता है, उसको ये मृत्यु परास्त नहीं कर पाता। इसलिए कालिदास ने साहित्य में इसी वेद के रहस्य को लेकर के लिखा, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तजाम। शैशव अवस्था के अंतर्गत जिसने विद्या का अध्ययन किया और युवावस्था में जब विद्या को आपने सीख लिया तो उस विद्या का प्रयोग किया, गृहस्थ आश्रम में उस विद्या का प्रयोग किया और कहने लगे उसमें प्रयोग करके जब प्रैक्टिस हो जाती ना, पहले डॉक्टर की डिग्री तो ले लेते हैं, फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उससे प्रयोगात्मक, और जब प्रैक्टिस करते हो प्रयोगात्मक हो जाते हो तो आप भी अनुभवी बन जाते। इसलिए हमारे यहां क्या कहा जाता, एक शब्द है शिक्षा और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या है? दीक्षा। सुशिक्षित और दीक्षित है, शिक्षा और दीक्षा, अंतर यह। इसलिए गांव में एक बड़ी कहावत कहते हैं कि बेटा पढ़े तो बहुत हो पर गुने, ये कहते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे साथ, हमारे यहां शिक्षा के साथ दीक्षा शब्द पड़ा, अर्थात जो विद्या हमने पढ़ी है उसका प्रयोग, उसकी लेबोरेटरी क्या है? गृहस्थ आश्रम। उसका प्रयोग कहां होता है? गृहस्थ आश्रम। वहां पर हमें क्या श्रम करना है? संकेत के तो शैशव अवस्था में हमने जो है उस विद्या को पढ़ा, कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार से जीवन में हमें चलना है, कैसे कर्म करना है, ये सब जो है उसके अंतर्गत बताया जाता। हमें जीवन यात्रा कैसे करनी है तो उस जीवन यात्रा को जो है हमने पहले सीखा, शिक्षा ली, और वो शिक्षा का जो आश्रम है वो कहां है? वही है ब्रह्मचर्य आश्रम। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हमने वो सीख लिया तो उसके अनुकूल फिर हम मार्गन करते हैं, और वो मार्गन करने की क्रिया कहां है? तो गृहस्थ।

आश्रम। और जब उसको हमने कर लिया, बार्गन कर लिया, तो क्या होता है? जब आप किसी मार्ग को बार्गन कर लेते हो तो मंजिल पर पहुंचने के स्थिति में आ जाते हो, और जब वहां पहुंच जाते हो तो वहां विश्राम फिर करते हो। क्या करते हो? विश्राम करते हो और अपने मार्ग का और पूर्व का सबका स्मरण करते हो कि हमने जो विद्या सीखी थी उनके अनुसार हम ठीक मंजिल पर पहुंचे। ये वानप्रस्थि है। वानप्रस्थि माने अपने उसी आत्मा का, अपने मंजिल का, अपने लक्ष्य का चिंतन करना, यही वानप्रस्थत्व है। और जब वहां पर आप पहुंच गए तो उस मंजिल में फिर उसके पट खुल गए, है उसका कपाट खुल गया, तो उसमें जो बैठा हुआ देव उसके फिर आपको दर्शन भी हो जाता, तो ये संन्यास की स्थिति हो जाती। वहां सब कुछ व्यक्त हो जाता, क्या रह जाता है? जिसको मिलना था उससे मेल हो जाता। तो इसलिए संकेत किया, सहस्वे अभ्यस्त विद्या नाम यौवनी विशेष नाम वार्धके मुनवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तया। फिर वो योग के द्वारा जो है अंत में शरीर छोड़ दे। वो योग क्या है? तो ये जो विद्या है यही उसका योग है, ये जो ज्ञान है यही योग है। इसलिए जब विद्या की स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति होती है, और उसको क्रम के से लेकर के चलता है, तो कहने लगे अंत में जो है उसकी इच्छा मृत हो जाती, जैसे पितामह भीष्म की हो। और भी चर्चा आती, लोकमान तिलक के विषय में संकेत आता कि उन्होंने जब मृत्यु आई तो उन्होंने भी क्या देखा? उन्होंने देखा इम दूतों की विमल ध्वजा जरा दृष्टि में आती है और युद्ध करती, देह युद्ध करती और देह हारती जाती है। किससे? कहा रोगों से। युद्ध करती, रोगों से देह हारती जाती। ये क्या है? यही तो सारी स्थिति है, यही तो शास्त्र बतलाते हैं। वहां पर जो है उन्होंने भी देखा कि जो है अभिमराज की जो है सेना आ गई, उसकी ध्वजा को देखा और देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी देखा, केवल एक तरफ नहीं देखा। क्या देखा? कि आक्रमण तो हो रहा है और जो है वो सेना युद्ध कर रही है। कहा किससे कर रही? कहा शरीर से। और शरीर में क्या? नाना प्रकार के रोगों को, विकारों को वह ला रही। और यही तो पुरंजनी और पुरंजन की कथा में सुना, प्रज्वार, कालकन्या और ये सब आए तो उसने नगर में आग लगा दी, है ना? यही सब तो किया। और जो पंच प्राण जो है इसको वहां सर्प करके कहा, ये भी रक्षा नहीं कर सका। तो ये सब जो है वहां कालकन्या आदि और जो है जो सबकी चर्चा, प्रज्वार आदि की चर्चा की, तो अवस्था के अनुसार क्या है? यही शरीर की स्थिति होती। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है जिसने विद्या प्राप्त की, तो वो क्या देखता? वो देखता है कि यमराज की है सेना आ गई है और इससे शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें दृष्टा बना हुआ। और ऐसा जो दृष्टा रहता है वो जानता है कि शरीर जो है वो तो धारण किया हुआ वस्त्र है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन हो रहा है लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ऐसा जो व्यक्ति है वही इस वेदांत के सिद्धांत को प्राप्त कर लेता है, और वेदांत के सिद्धांत को जब प्राप्त कर लेता है, ये उसके जीवन में जब आ जाता है तो क्या होता है? तो कहने लगे उसी के जीवन की प्रगति होती है, उसी के जीवन में वह नूतनता आती है, उसी के जीवन में वह रमणीयता आती है, वही प्रगति को प्राप्त होता है। और ये चीज जिसके जीवन में नहीं आ पाती तब तक वह प्रगति को प्राप्त, तो इसके लिए क्या चाहिए? कहा विद्या चाहिए। जैसे वामदारी आदि की चर्चा आई वैसे ही यहां। और भगवान शिव तो कैसे, जो महान है कहो मिलने से वो कैसे मिलेगा? वो तो मिलने के लिए तैयार, और उसके लिए तो इतनी सरस चर्चा कर दी। वहां कहा पत्र है, गीता में भी भगवान कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, तो पत्र फल कामित दे स्थिते सांबे, माने केवल पत्र और फल मात्र से ही वो जो साम्ब जो स्थित है, जिसकी सदा स्थिति है, वो क्या है? कहा सब कुछ दे देता। और फिर कहा भजसि कृपणम नृपंसु दुस्सेव्य महो कथम चेता। तेरे चित्त के अंदर ये है कि इसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा तुझे नहीं सोचना चाहिए। वो तो बड़ा सरल है, और सरलता क्या दिखलाई? कहा जो फल है जहर है, जिसे कोई ग्रहण नहीं करता, और वो फल उसको दे दो। और कहा